0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।

0: यूपीआई ने बनाया है गांव और कस्बों में पेमेंट को आसान। करीब 60% यूपीआई पेमेंट हो रहे हैं 500 रुपए से नीचे और हर दो में से एक ग्लोबल डिजिटल पेमेंट हो रहा भारत में।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए $18 अरब तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेज दी है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है

0: 9779 8513168 07 और 9779709107500। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 0086185142-8495। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपये देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
2: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
3: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
4: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

0: ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
2: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत आने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहाट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमरीका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले। प्रधानमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया युवाओं को जोड़ने का अभियान है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में खेल राष्ट्रीय प्राथमिकता और युवा सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अंतर्गत मेरा युवा भारत ने आयोजित किया। देश भर में इस कार्यक्रम में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने भाग लिया। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो

0: गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हेन्दी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिवशेर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। भारत ने कल नेपाल के लोगों की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां भेजी थीं। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 77,273 पर और निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 24,158 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century. He said, from sports universities to modern training centres, an ecosystem is being developed across the country where talent receives support at every stage. Addressing the Khelo India dialogue through video conferencing today, Mr. Modi said sports is not limited merely to winning medals, rather it is a mission to unite India's sporting prowess and youth power in the building of a developed India.
3: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
2: He said every district has the potential to shine on the global sports map. The Prime Minister said he had announced from the ramparts of the Red Fort a big talent hunt to identify kids from 5 to 15 years of age in sports. Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports, Mansukh Mandavia, said under the leadership of Prime Minister Modi, sports has emerged as a national priority and an important instrument of youth empowerment. The program was organized as part of the National Sports Day 2026 celebrations by Mera Yuva Bharat, My Bharat. It was conducted across the country with participation of youth at two colleges in every district across states and union territories. Nearly 300 Indian tourists are among thousands who are reportedly missing after a flash flood swept through parts of the Nepal-Tibet border. Nepal Foreign Minister Karnal today said nearly 300 Indians are among thousands reported missing in

0: 1,330, while the Nifty dropped 36 points to 24,171 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government is fully committed to creating a modern sports ecosystem for India in the 21st century, addresses Khelo India dialogue through video conferencing. 300 Indians among thousands missing in massive flash flood in Nepal, over 160 dead. India sends second tranche of relief materials. NDRF teams deployed in Bihar and Uttar Pradesh to respond to any flood-like situation. Forecast of heavy rainfall over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. US President Donald Trump says no fixed timeline for Iran to return to negotiating table. And in men's cricket, Sri Lanka extend their lead over India to 151 runs in second innings of the second and final test at Colombo. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत 300 भारतीय समेत 1000 से ज्यादा लोग लापता भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत की कोई निश्चित समय सीमा नहीं और कोलंबो में दूसरे तथा अंतिम टेस्ट क्रिकेट में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले
2: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है मैं हमेशा कहता आया हूं जो खेले वो खिले और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी
2: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है
3: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल

0: इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
1: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के दो दो कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित आईआईटी में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉ मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
2: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से दो मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
1: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेइचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल्कि महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल्कि एक टीम तैनात की गई है।
1: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं श्रोताओं आज का सुविचार। इसे भेजने वाले हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला जी। लिखते हैं,
2: सत्य की राह भले कठिन हो लेकिन मंजिल हमेशा उजाले तक पहुंचाती है। झूठ कुछ पल चमक सकता है पर सत्य सदा सम्मान और विश्वास दिलाता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके द्वारा भेजे गए संदेश। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: तहसील ठियोग जिला शिमला से सूरज चौहान जी।
1: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने लिखा है, आज उमंग कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के जीवन संघर्ष और राष्ट्रभक्ति से जुड़ी अत्यंत रोचक प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक जानकारी सुनने का अवसर मिला।
2: ये भी जानिए, मैं ये जानकर गर्व हुआ कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ओजस्वी पुकार और जय हिंद जैसे अमर राष्ट्रनाद को जन जन तक पहुंचाने में नेताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
1: उनका अदम्य साहस, अटूट देश प्रेम और बलिदान आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए अजीत जी और विमलेश जी और कार्यक्रम की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखा है, आपकी संपूर्ण टीम को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने वाले कार्यक्रम के निर्माण हेतु हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश सेवा सर्वोपरि के सिद्धांत को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से श्रेष्ठ साबित करने वाला प्रेरक प्रसंग सुनकर मन गदगद होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद।
2: आपको भी हार्दिक आभार संदेश भेजने के लिए। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। जैसा हर बार हम निवेदन करते हैं इस बार भी करेंगे कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं इस सप्ताह पिछले दो दिनों में हमने बात की भारत के दो अनोखे गांवों की। आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक और रोचक गांव की जानकारी। तो विमलेश जी आज अपनी ज्ञान यात्रा में हम कहाँ चल रहे हैं?
2: अजीत जी चलिए एक बार फिर से रुख करते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्य की ओर और चलते हैं एक गांव में जहाँ मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो।
1: क्या बात है, जहाँ मानो बारिश रुकना ही भूल गई हो। अच्छा ऐसा भी कोई गांव है? कोई मजाक कर रहे हैं आप?
2: नहीं नहीं अजीत जी बिल्कुल सच। ये वो जगह है जहाँ के छाते भी कहते हैं वर्षा रानी कभी तो रुको।
1: क्या बात है, वर्षा रानी कभी तो रुको।
2: जी चलिए श्रोताओं की ओर से एक प्रश्न पूछती हूँ, बताइए ये कौन सी जगह है?
1: अगर

0: कोई ऐसी जगह है जहां पर कि वर्षा भी रुकना भूल जाती है, तो मुझे याद आ गया, वो जगह है मौसिन राम, ये मेघालय राज्य में है।
1: बिल्कुल सही जवाब। अच्छा तो जरा श्रोताओं को ये तो बता दें कि कितनी बारिश होती है वहाँ।
0: विमलेश जी, यदि यूं ही बता दूं ना कि वहां की औसत सालाना बारिश कितनी होती है, तो जानकारी में वो मजा नहीं आएगा।
1: जी
0: तो पहले मैं बताता हूं कि भारत के कुछ और शहरों में बारिश कितनी होती है।
1: जी
0: जैसे दिल्ली के औसत वार्षिक वर्षा लगभग 650 मिलीलीटर।
1: चेन्नई की लगभग 1400 मिलीमीटर और मुंबई की लगभग 2200 मिलीमीटर।
0: और यदि कोलकाता की बात करें तो ये लगभग 1600 मिलीमीटर है। तो अब सुनिए कि मौसिन राम मेघालय की औसत सालाना वर्षा कितनी है।
1: जी
0: तो यहाँ की सालाना औसत वर्षा है 11,900 से लेकर 12,000 मिलीमीटर तक,
1: जी
0: यानी यदि इसे मीटर में मापें तो औसत सालाना बारिश लगभग 12 मीटर के आसपास है।
1: 12 मीटर, यानी अगर इतना बारिश का पानी जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा।
0: जी, तो विमलेश जी, अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चेन्नई, मुंबई और अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ बारिश कितनी होती है,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि यहाँ पर 1200 मिलीमीटर की बात हम कर रहे हैं। तो आपने ठीक कहा, 12 मीटर यानी इतना पानी यदि जमा हो जाए तो 4 मंजिला मकान की ऊंचाई के बराबर होगा। हालांकि इतना पानी वहाँ जमीन पर लगातार जमा नहीं रहता,
1: जी
0: लेकिन जरा सोचिए विमलेश जी, आसमान से हर साल करीब 12 मीटर यानी 39 कह लीजिए या तो 40 फीट पानी बरसता है।
1: आपने बड़ी अच्छी तरह से इसकी तुलना की है। अब समझ में आया कि कितना पानी वहां बरसता है। तो अब एक और मजेदार सवाल, वहां के लोग सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते होंगे, चाय या मौसम का हाल?
0: शायद दोनों ही, लेकिन उनके लिए बारिश कोई खास घटना नहीं है, ये तो उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है।
1: जी अब कुछ और मजेदार बातें जानते हैं। अजीत जी, वहाँ अनाज का भंडारण और कपड़ों को सुखाना तो बहुत बड़ी समस्या होगी, वहाँ ये काम कैसे होते हैं?
0: विमलेश जी, बड़ा अच्छा और उपयोगी प्रश्न आपने पूछा। वहाँ कपड़ों को सुखाने के लिए पारंपरिक रूप से टिन या लोहे की पेटियां होती हैं,
1: जी
0: जिन्हें आग जलाकर गर्म रखा जाता है। भीगे कपड़े उन्हीं गर्म पेटियों में सूखते रहते हैं।
1: और अनाज का भंडारण वे धान के पुरालों या पुआलों में रखकर करते होंगे, ये उनके पारंपरिक तरीके हैं।
0: जी
1: तो जी जी अब बात करते हैं उनके घरों की। घरों को भी भारी बारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। उस इलाके में बहुत से ऐसे घर मिल जाएंगे जो बांस के खम्भों पर टिके हुए हैं। वहां रास्तों पर पानी, फिसलन और कभी कभी भूस्खलन भी बहुत बड़ी चुनौती है। बता दें कि खासी जनजाति का मुख्य भोजन चावल है और जादो यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है।
0: इमलेश जी, मन में एक सवाल और आता है कि वहाँ बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे।
1: अजीत जी, ऐसा नहीं है कि वहाँ बारिश के कारण स्कूल बंद रहते हैं। भूस्खलन और तेज तूफानों के समय विशेष सावधानी बरती जाती है, लेकिन वहाँ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं। दिल्ली और NCER शहरों में स्कूल जाते समय बच्चे सोचते हैं, आज बारिश होगी तो क्या होगा, जबकि
0: मौसिन राम में बच्चे सोचते होंगे आज कितनी बारिश होगी। विमलेश, इतनी बारिश के बाद वहां की प्रकृति कैसी होगी।
1: अद्भुत, चारों तरफ हरियाली, पहाड़, झरने, धुंध और गुफाएं, मानो प्रकृति ने खुद को हरे रंग में रंग दिया हो। एक बात और, वहां लगातार होने वाली बारिश के कारण सामान्य पुल बहुत अधिक नहीं टिकते, इसलिए उस क्षेत्र और मेघालय राज्य में पेड़ों की जड़ों से भी पुल बनाए जाते हैं।
0: जी हाँ, इन्हें लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। यहाँ पेड़ों की जीवित जड़ों को वर्षों तक दिशा देकर मजबूत पुल का रूप दिया जाता है। ये पुल कभी नहीं टूटते।
1: जी
0: यानी विमलेश जी, सब कुछ सुनकर ऐसा लगता है कि वहाँ के लोग प्रकृति को हराने की कोशिश नहीं करते।
1: जी बिल्कुल सही कहा अजीत जी, वे प्रकृति के साथ जीना सीखते हैं। तो अजीत जी, मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स का ये गांव मौसिन राम हमें क्या सिखाता है?
0: विमलेश जी, ये गांव हमें ये सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मनुष्य उनके साथ तालमेल बनाकर जीवन को सुंदर बना सकता है।
1: जी अजीत जी, मेरे मन में एक खूबसूरत वाक्य आ रहा है,
0: भला वो क्या।
1: बारिश कितनी भी हो, जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
0: वाह क्या बात है, बारिश कितनी भी हो।
1: जीवन में उमंग की धूप बनी रहनी चाहिए।
0: जी, ये बात है। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी भारत के एक और गांव मौसिन राम के बारे में। ये गांव तो है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, हमारा प्रश्न है, मौसिन राम और मेघालय खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
0: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
1: और यदि आपको NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है

0: तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए।
1: जी, पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप करें।
0: और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना है या ऑडियो बुक्स तो YouTube पर जाइए और टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। विकल्प आपको मनचाही पाठ्य पुस्तकों पर ले जाएंगे।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सबसे पहला हमारा आज का कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में विस्तार से बताया गया है और विशेषकर इसके बनने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई है।
1: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी, नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
6: नाना जी, इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा, मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
7: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
7: हाँ वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
7: अच्छा, तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता, तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
4: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
3: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
4: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है। वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
3: अच्छा नाना जी।
4: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
3: अच्छा।
4: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
3: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
4: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश

0: करती हैं। कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
1: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले के

0: से 70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
1: बिल्कुल।
0: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
2: अच्छा।
0: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
2: अच्छी अर्थव्यवस्था।
0: हाँ।
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
2: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
2: ओह।
0: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
1: वही, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
2: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया।
5: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण जनजातीय कार्यकर्त्री तुलसी गौड़ा के जीवन और पर्यावरण संरक्षण में उनकी अहम भूमिका के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती।
8: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा।
6: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
9: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है।
10: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
11: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
10: ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
12: आज नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक

0: जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
1: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
0: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
2: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।

0: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
1: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
0: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
2: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
0: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
3: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
4: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
3: अच्छा।
4: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
3: अच्छा।
4: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
3: अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
4: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
3: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
4: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
2: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट।

0: तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
1: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम तुलसी गौड़ा जंगल की इंसाइक्लोपीडिया। हमें आशा है कि हमारे आज के कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आए होंगे। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
2: चेतना,
1: जगबंधु
2: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: మీరింతవరకు ఎన్సీఈఆర్టీ వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం విన్నారు.

0: आंखों देखा सुनेंगे, आंखों देखा सुना रही है, हिंदी में महेश तिवारी और अंग्रेजी में शांतनु मिलिंद टिपनेस। आइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम चलें।
1: नमस्कार, भारतीय वायुसेना और ये टूर्नामेंट जो यहाँ पर आज सुबह तो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा है 2026, आज ये भारत के ऐतिहासिक स्टेडियम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पर मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में संतनु टिपनिस, हमारे आकाशवाणी स्पोर्ट्स वैक्स प्रोड्यूसर शंतनु शाहनवाज खान और टेक्निकल टीम की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ये मुकाबला जो यहाँ पर खेला जाने वाला है वो 65वें सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के अंतर्गत ये मुकाबले खेले जा रहे हैं और उसके अभी थोड़ी ही देर में की शुरुआत होगी, लेकिन जहां तक मैच का सवाल है अभी सारे खिलाड़ी लाइनअप करते हुए बीच मैदान पर नजर आ रहे हैं और सारे खिलाड़ी लाइनअप करते हुए नजर आ रहे हैं बीच मैदान पर और देखने वाली बात यह होगी कि कब जाकर इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी। फाइनल का मुकाबला, दर्शकों का उत्साह उमंग बहुत तेजी से यहां पर गर्मजोशी के साथ यहां पर दिखाई दे रहा है और ब्लू जर्सी और ब्लू पैंट और टी शर्ट में यहां पर जो टीम है वो नजर आ रही है। यहां पर झारखंड की टीम पैट्रिक हाई स्कूल गुमला और जबकि येलो ड्रेस में

0: राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बाद मैं सभी श्रोताओं का फिर से यहाँ पर अभिवादन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। फिर से एक बार ये दोहराते हुए कि मेरे साथ अंग्रेजी के कॉमेंटेटर संतनु टिपनेस, हमारे प्रोडक्शन टीम में हमारे शाहनवाज खान जो स्पोर्ट्स मैक्स, और उनकी टेक्निकल टीम यहाँ पर पूरा सहयोग दे रही है इस प्रसारण को आप तक पहुँचाने में। तो आज का इस फाइनल मुकाबला, अंतिम मुकाबला, जिसको लेकर काफी उत्साह उमंग यहाँ पर साफ नजर आ रहा था सुबह से, झारखंड और यहाँ पर मिजोरम टीम के बीच में ये संघर्ष आज यहाँ देखने को मिलेगा। जबकि ये मुकाबला जो खेला जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली, दिल्ली का ये ऐतिहासिक स्टेडियम जहाँ पर दिल्ली में फुटबॉल का ये प्रमुख केंद्र समझा जाता है। इससे पहले से कॉरपोरेशन स्टेडियम के नाम या दिल्ली गेट के नाम से, स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। इसका रख रखाव और स्वामित्व दिल्ली नगर एमसीडी के पास है। लगभग 35,000 दर्शक बैठने की क्षमता इस स्टेडियम की है। 2007 में इसका रिनोवेशन किया गया, फ्लड लाइट्स लगाई गई और कई सुविधाएं मुहैया कराई गई, जिसकी वजह से आज शाम के वक्त या रात के वक्त भी यहाँ पर कई टूर्नामेंट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। फुटबॉल दिल्ली जो सॉकर एसोसिएशन है उसका मुख्यालय यहाँ स्थित है। यही वो जगह है जहाँ पर नेहरू कप साल 2007 और 2009 में भारत ने इसी स्टेडियम पर जीत कर सीरिया को परास्त कर ऐतिहासिक नेहरू कप जीता था। और 2008 में भारत ने एएफसी चैलेंज कप में कजाकिस्तान को हरा कर एशिया कप के लिए क्वालिफाई किया था। और नियमित रूप से डुरान कप, सुब्रत कप, डीसीएम ट्रॉफी और दिल्ली के कई प्रीमियर लीग यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। आई लीग और स्थानीय क्लब जैसी कई सुविधाएं यहाँ पर इस क्लब का फायदा लेते हुए नजर आ रही है। इस टूर्नामेंट का आयोजन, जैसे कि आप जानते हैं, भारतीय वायुसेना IAF के स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तहत सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी SMSES द्वारा किया जाता है। ये 65वां ये संस्करण है और इस 65वें संस्करण में, जैसे कि आप जानते हैं, 18 अगस्त को इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई थी। और इसके कुल मैचेज जो खेले गए, नई दिल्ली NCR में अम्बेडकर स्टेडियम, तेजस फुटबॉल ग्राउंड, सुब्रतो पार्क फुटबॉल ग्राउंड, पिंटो पार्क ग्राउंड और राजोकरी फुटबॉल ग्राउंड पर मुकाबले खेले गए। बेंगलुरु में एयरफोर्स स्कूल जलाहली, एयरफोर्स स्कूल येलाहंका और सुब्रतो फुटबॉल ग्राउंड जलाहली में ये मुकाबले खेले गए। संतनु, आज फाइनल का जो मुकाबला खेला जा रहा है झारखंड और मिजोरम के बीच में, क्या उम्मीदें, क्या अपेक्षाएं लेकर आप सोचते हैं कि ये टीम मैदान पे उतरी होगी?
1: एंड सो वी रीअसेंबल फॉर द 65th एडिशन सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2026। Ladies and gentlemen, boys and girls, children of all age group, welcome, welcome all you football fans to the historic Dr. B.R. Ambedkar Stadium. The stage is set, the lines are drawn and the floodlights are beaming down on the historic turf of Dr. B.R. Ambedkar Stadium. It is time for the grand finale of the junior girls under 17, the subdivision of the Subroto Cup International Football Tournament. NCC versus Jharkhand is the final lineup, and as we gear up to the kickoff, just moments away now from what has been a fantastic evening so far building up to the stadium. As we see Mahesh in the stands, a lot of young children from across the country motoring the way to the Ambedkar Stadium to see what a spectacle this will be. You can literally feel the sense of order, pride and history filling the air tonight, and that is exactly because this tournament carries a proud lineage of the Indian Air Force. It bears the name of Air Marshal Subrato Mukherjee, the first Indian Chief of Air Staff and the visionary leader who realized over 6 decades ago that the future of Indian football lies at the grassroots school level. When you see the precision on the pitch tonight, Mahesh, it will mirror the elite discipline of the force that organizes it. And from what I have seen so far building up to this match,

0: I think both the teams are equally pumped up. Just cannot wait for the match to start. In the yellow kits, we have NCC from Jharkhand, who have been built on a legacy of pure dominance. Springfield Higher Secondary School from Aizwal, Mizoram, storming into their first ever national final. They stand squarely in front of the dominant force in the form of St. Patrick's High School from Jharkhand, who have been three-time winners of this subdivision category. Only Jharkhand and the school from Bangladesh in the form of Shiksha Pratishthan School have been able to win this division crown three times. 2022 is when it all started for Jharkhand. 2023 defended the title successfully. 2024 again marking a triple crown. Now standing fearlessly in front of them is NCC, who are there playing in the first match. Mahesh, how about the lineup today?
1: बिल्कुल, और जो टीम इस टूर्नामेंट में खेलती हुई नजर आ रही है, आपको बता दूं झारखंड के लिए जो टीम नजर आई उसमें खुशबू कुमारी गोलकीपर होंगी, और ड्रेस कोड है जैसे कि स्काई ब्लू, हमने पहले आपको बताया, सबारनी कुमारी, उषा कुमारी, खुशबू टिक्का, मनीषा डू, बीना कुमारी, सृष्टि कुमारी, सीमा और ऑन, सुनेला टूटी, कृति और ऑन और सोनल मुंडा, जबकि उनके रिजर्व प्लेयर हैं गौरी सिंह, अनुषा, बेटी स्विट मीन्स अर्चना डू और अंचल आर ऑन, और जबकि मिजोरम की टीम का सवाल है येलो ड्रेस में, येलो टी शर्ट और येलो हाफ पैंट में टीम नजर आ रही है। हमारे खिलाड़ियों के नाम, जैसे आप जानते हैं मिजोरम के खिलाड़ियों के नाम प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन फिर भी उसके जो खिलाड़ी हैं, बी लाल रुआतियंगी, नानसी सिमसा गपुई, वायलट लाल रुआत लुआंगी, लल्ला झुआली, नेम किचोई हाओ किप, आयरिन नेग दीप थेन, थुवान दिनपुई, जेएच लाल लुनपुई, एसले रेमान संग किमी, ओपिस सिपा, जबकि रिजर्व प्लेयर हैं मर्सी लाल प्यारधारी, पीसे लाल रिंदुई, मालसाव लुआन जी और लाल फाम किमी। तो ये टीमें दोनों आज एक दूसरे के साथ संघर्ष करती हुई नजर आएगी, और जैसे संतुर आप जानते हैं जो कि सेमीफाइनल में इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में जो टीमें जीती हैं, सबसे पहले तो मैं पिछले सात संस्करण का अगर जिक्र करूं तो उसमें 2017, 2018, 2019 में बांग्लादेश के बांग्लादेश क्रीड़ा शिक्षा प्रतिष्ठान ने अपना वर्चस्व प्रस्थापित किया था। तीन लगातार मैचेस जीत के तीन साल उन्होंने हैट्रिक की थी, 58, 59 और 60वां संस्करण उन्होंने जीता। उसके बाद 2024 में, फिर 22-23 में सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल जो आज फाइनल में खेलता हुआ नजर आ रहा है, 2022-2023 में दो बार लगातार 61 और 62 संस्करण उन्होंने जीता, और 2024 में होम फील्ड हाई स्कूल हैदराबाद जिन्होंने 63वां संस्करण जीता था, और पिछले मुकाबले जो पिछले साल का जो मुकाबला हुआ था 64वां संस्करण उसके विजेता रहे थे बेटकुची हाई स्कूल गुवाहाटी। हालांकि वो अब इस टूर्नामेंट में नहीं है, शायद लीग में ही बाहर चली गई है, लेकिन ये दोनों टीमें नई, जो कि झारखंड की टीम दो बार पहले चैंपियन हो चुकी है, लेकिन जहां तक मिजोरम का सवाल है, मैं समझता हूं कि पहली बार यहां पर अपने इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए यहां पर उतरी हुई नजर आ रही है।
0: Well, certainly the junior girls under 17 category that began on 18th August, so 9 days into the tournament, and here we are approaching the final moments before the final clash begins. 36 teams spread across 8 pools. NCC belonged to Pool C and Jharkhand from Pool F, now the two last teams standing. A win today for Jharkhand and they will stand alone as the first school team in tournament history to capture a record and making it 4 titles of the junior girls under 17 in the Subroto Cup international football tournament history. Both the teams put together in this tournament so far 43 goals for Jharkhand, 41 goals for NCC. That is some goal scoring form both teams have shown throughout the tournament. Mind you, 2 undefeated records, only 1 trophy to go for tonight. Sit back football forms, because an absolute classic is about to unfold. When you look at both the records put together, 84 goal combined together, only 2 lethal undefeated defenses. So what this speaks is both the teams have had quite rock solid defenses. The back four, the goalkeeper, the defense that forms the 5 have been steady, have been rock solid, and have ensured that the midfield and the attack is

0: में मेघालय की टीम को 6-0 से उन्होंने परास्त किया और सेमीफाइनल में छत्तीसगढ़ की टीम को 2-1 से उन्होंने हराया। जबकि सैनी पैट्रिक हाई स्कूल गुमला, ये जो टीम है झारखंड की, इन्होंने अपने लीग मैच में दिल्ली को 8-0 से परास्त किया, आईपीएससी की टीम को 11-0 से और त्रिपुरा की टीम को 3-1 और एपीएस की टीम को 9-0 से उन्होंने परास्त किया। और जहां तक क्वार्टर फाइनल का सवाल है, उन्होंने बिहार को 5-1 और सेमीफाइनल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला था सीआईएससीई की टीम को 2-0 से परास्त करके उन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई है। तो दोनों टीमें जैसे कि आपने जिक्र किया बहुत मजबूती के साथ संघर्षपूर्ण मुकाबला खेलते हुए आज इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये दिन मुझे याद आ रहा है एयर मार्शल सुब्रत मुखर्जी, जिसे फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है, भारत के पहले वायुसेना प्रमुख, और उन्हें फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स जैसे कि मैंने कहा जाता है। उनका जन्म 5 मार्च 1911 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ। उनकी सोच थी कि अगर फुटबॉल को आगे बढ़ाना है भारत में तो ग्रास रूट लेवल पर इसका प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है, और वही सोच के उन्होंने 1958 में सोच रखी और 1960 से ये टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। शिक्षा और प्रशिक्षण जहां तक उनका सवाल है कोलकाता में हुआ। इंग्लैंड में उन्होंने रॉयल एयरफोर्स कॉलेज से विमानन प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1932 में जब भारतीय वायुसेना का गठन हुआ तो वे पहले 6 भारतीय कैडेट्स में से एक थे। फिलहाल खेल यहां पर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, दोनों खिलाड़ी बाएं हमारे दाहिनी तरफ इस समय स्काई ब्लू ड्रेस में नजर आ रही है झारखंड की टीम, और बाईं तरफ ये जो टीम है ये नजर आ रही है यहाँ पर मिजोरम की स्प्रिंगफील्ड हायर सेकेंडरी स्कूल आइजवाल। तो जो नजर आ रहा है फील्ड वो 5-3-2 इस तरह की रचना, जबकि 4-4-2 इस तरह की रक्षा होगी यहाँ पर झारखंड की टीम।
1: इट बिगिंस राइट हियर राइट नाउ। In yellow is the team from NCC as well Mizoram, who then put the ball underway right from the center of the park, center circle, and an immediate attack from the right flank player, nicely disguising the defense there, cutting inside the D, superb block, a timely intervention from the defense of Jharkhand, and now Jharkhand able to make strides, a fantastic start to this tournament. Midfield dominant play seeming to be the early form. What a through ball this can prove to be. The forward attacking, but fantastic reading of the game by the goalkeeper from NCC, coming out of the line and ensuring that the ball is cleared out for the first throw. Jharkhand in possession now. The head coach of the Jharkhand team, Bina Karketa, now looking seemingly agitated at the beginning minutes that have unfolded here. Again in possession is NCC, this time trying to find the pace of the ball, some slight drizzle in the early evening of the match, and which is why the grass also seems to be quite slippery, quite sluggish, and both the teams will take some time to get used to the pitch of the ball.
0: बिल्कुल सही संतोष, थोड़ी बूंदाबांदी जो हुई, जो बारिश हुई इसकी वजह से थोड़ी सी फिसलन जरूर मैदान पर होगी, लेकिन फिर भी खेल और खिलाड़ियों के हौसले बुलंद, वहां पर गोल पोस्ट के अंदर प्रवेश करते हुए पेनाल्टी एरिया के अंदर, लेकिन वहां पर गोल लाइन से बाहर की तरफ। मानना पड़ेगा कि झारखंड की टीम ने आते ही अपना आक्रामकता यहां पर दिखाई है, बहुत तेजी के साथ उन्होंने अच्छे पासेस दिए, तिरछे पासेस, और यहां पर कॉर्नर लेती हुई यहां पर झारखंड की टीम, देखना है कि इस कॉर्नर का कितना फायदा उनकी टीम उठा पाती है, जबकि सारे खिलाड़ी मुस्तैद वहां गोल पोस्ट के पास, इंतजार पहले गोल का सारे दर्शकों के साथ उछलती हुई ये गेंद, और देखना है कि गोल पोस्ट में दाग पाते हैं नहीं, और गोल पोस्ट के बाहर पहला खतरा यहां पर टलता हुआ नजर आया, लेकिन फिर भी वहां पर एक कॉर्नर किक फिर से दी गई है वहां पर झारखंड के पक्ष में, और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है ये, इसे जहां पर दिखाया एक ने, और क्या हेडर का इस्तेमाल होगा यहां पर, मौका है वहां पर गोल पोस्ट के बिल्कुल पास करीब, लेकिन निकालते हुए वहां पर तेजी के साथ सिमांग कुई ने उसको पास दिया अपने बाएं प्लैंक की तरफ, और गेंद फिर टच लाइन से बाहर की तरफ जाती हुई। मानना पड़ेगा कि जो तालमेल, समझ बूझ, अंडरस्टैंडिंग जो खिलाड़ियों के बीच में नजर आई शुरू से ही झारखंड की टीम में, वो एकाग्रता, वो चपलता नजर आ रही है।
1: The first minutes of the game surely show Mahesh why Jharkhand, the St. Patrick's School, is the undisputed royalty of this competition. The three-time champions now having possession of the ball higher up in the right side flank. Another throw goes out and Jharkhand in possession again. And mind you, this is not the first meeting of both these teams in the Subrata Cup International Football Tournament. Back in 2023 semi-finals, these two identical programs.

0: Graham Smith, Jharkhand then put on a clinical performance, and as we see the ball rolling into the D, nicely put out by the white player, jersey number 7 in possession now. A wonderful cross into the box, but finds the NCC defence, and the NCC defender is able to put the ball out safely for another Jharkhand throw. Jharkhand getting a lot of throw-ins now, will be important to see, can they capitalise from this aggressive opening. The defence line of Jharkhand, as you would imagine, is pushing higher up in the field, making the midfielders go higher up, and the attack line putting on the pressure. This seems to be a strategic move by the head coach, seemingly urging the players to press high up the field and put the pressure on the NCC defence lines. An opportunity here goes begging, a good shot, but a good save to go with that. And the NCC goalkeeper is making some good impression in the beginning of the game.
1: बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही बचाव किया वहाँ पर भी लाल रुआत संगी जो कि गोलकीपर हैं और निश्चित रूप से ये खतरा उन्होंने टाला अपनी टीम के लिए लेकिन मानना पड़ेगा जिस तरह से यहाँ पर अच्छे पासेस ड्रिबल किए जा रहे हैं यहाँ पर झारखंड की टीम के जरिए वो दिखा रहा है कि कितना आक्रमकता और कितने अच्छे सटीक उन्होंने अब तैयारी की इस फाइनल मुकाबले की और निश्चित रूप से कोशिश उनकी यही होगी कि तीसरी बार इस मुकाबले को जीता जाए लेकिन दूसरी तरफ मिजोरम की टीम दस से मस्त होने का नाम नहीं ले रही अभी हालांकि बहुत प्रारंभिक क्षण है अभी तिरछा पास वहां पर किसी तरह से वहां पर छीना खिलाड़ी ने 9 नंबर के खिलाड़ी को पास देती हुई आयरन नैंग थीम और उसके बाद यहां पर फिर झारखंड के पक्ष में वहां पर खिलाड़ी सुनेला टुड्डू पास दिया उन्होंने 7 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के पास सुनेला टुड्डू निश्चित रूप से थोड़ा सा चिप करता हुआ स्ट्रोक ये शॉट उनका लेकिन गोल पोस्ट के अंदर बिल्कुल दबाव बरकरार रखा है आक्रामक जो खिलाड़ी हैं इसके झारखंड के टीम के वो पूरी तरह से दबाव में डालने की कोशिश में लगे हुए हैं मिजोरम के टीम के ऊपर हालांकि वहां पर जो रेफरी है उन्होंने गेंद टच लाइन से बाहर की तरफ गया है जो इसके रेफरी हैं सर्जेंट एस शरत लामलोंग और असिस्टेंट रेफरी इसके कॉर्पोरल स्टीफन और दूसरे रेफरी हैं उत्पल बोरा ये पहरेदारी कर रहे हैं इस मुकाबले की फिलहाल पास यहाँ पर मिड फील्ड पर चलता हुआ मिड सर्कल पर खेल चलता हुआ काफी तेजी के साथ वहां पर जा रही है आयरिन क्या आयरिन ले पाएगी आगे की तरफ लेकिन फिर वहां पर पोजीशन छीनती हुई आगे बढ़ने की कोशिश में वहां पर पी सिपाल और फिर सेंटर लाइन की तरफ खेल आगे बढ़ता हुआ लेकिन मानना पड़ेगा कि बहुत जल्दी वहां पर गेंद ने पोजीशन अपनी तरफ से प्राप्त करते हुए झारखंड की टीम दबदबा बरकरार रख रही है हालांकि इस बार जो खेल चल रहा है वो सेकेंड हाफ जो झारखंड का है उसमें मुकाबला चल रहा है लेकिन दोनों टीमों का अभी भी मुकाबला शुरू हुआ है संतनु तो मैं समझता हूं कि जैसे जैसे समय आगे बीतेगा खिलाड़ियों का शरीर उनका ब्लड प्रेशर गर्म होगा और उसके बाद खेल और गर्म जोशी के साथ यहां पर खेलता हुआ नजर आएगा
0: यस एब्सोल्युटली महेश एज यू कैन सी इन द लास्ट कपल ऑफ मिनट्स एनसीसी नाउ एबल टू पुट सम पासेस टुगेदर दे आर एबल टू बी ऑन द सेम वेवलेंथ एज The two defenders in the central of the park are able to do good communication, put the ball out in the right flank, onto the left flank, and switch the term of the play. However, the captain Bina Kumari from Jharkhand, who has been the dominating force throughout the tournament, is able to dictate play. Another chance, a tackle inside the D. Fantastic sliding tackle. The referee says plays on. Fair tackle in the right spirit of the game, but the ball goes out. For another throw and Jharkhand again pressing high on the front foot. NCC now have to certainly get their game together to put some passes together and make sure that this is an equally fought tie. Jharkhand dominating the ball at the moment, putting pressure on the ball in the midfield and making sure that NCC players are not able to put in any passes together. Has been a slightly start and stop game, not able to get in the feel or the control of the game so far but having known Jharkhand and having followed the history of the football club is not something that they will heavily rely on a chance goes begging now for NCC was a good attempt on the right flank a pass was made in behind for the runner a fantastic run on the head of the defender eventually goes out for a NCC corner and Mahesh this is now the first throw in that NCC has in the attacking territory in the final third the ball comes in into the D but again as you see NCC slightly following a cautious approach making sure that enough bodies are there to defend any sort of counter attack from Jharkhand. Jharkhand have been lethal on the counter-attack. 18 goals so far in the tournament on counter-attack. Another one brimming here from player number 10. Goes in the center of the park. Slightly juggled into the feet of player number 7, who's been an enormous implementation of the front line. The St. Patrick's High School from Gumla in Jharkhand, before making their current 2026 run, has built an incredible resume at the Subroto Cup International Football Tournament. The 2022 breakthrough season for them, where they first won their under juniors 16 and 17 championship. In 2023 was the title defense, and 2024 was the triple crown. Can they win tonight? And if they win tonight, they will be the first team to win this division of the under junior girls 17 for 4 times running.
1: बिल्कुल संतनु, देखना यही होगा कि क्या आज यहाँ पर जीत का सहरा अपने स्तर ये लड़कियां बधा पाती है. अंडर 17 का मुकाबला जो चल रहा है फाइनल मिजोरम और झारखंड के बीच में, यहाँ पर निश्चित रूप से संघर्ष, जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिला सवर्णी कुमार, उषा कुमारी, बीना कुमारी जो कि कप्तान है, उनके बीच में अच्छा तालमेल बनता हुआ नजर आया. और दूसरी तरफ से लाल फिल्म हुई जो कि जिन्होंने काफ़ी प्रभावशाली खेल का प्रदर्शन किया था सेमीफाइनल में, उन्होंने 2 गोल दागकर, पहला गोल दागकर बहुत बड़ा दबाव डाला था 36 के ऊपर, और उसके बाद में लाल गोदामी ने निर्णायक गोल करके मुकाबला जीता था. तो निश्चित रूप से यहाँ पर मिजोरम की टीम भी उतना हौसला रखती है, उतना तेवर रखती है कि वो भी इस मुकाबले में संघर्ष करते हुए विवश करें झारखंड की टीम को मुकाबला जीतने के लिए वंचित करने से. निश्चित रूप से संघर्ष की बिल्कुल कोशिश. शिप हेडर पास देते हुए इस समय खेल चल रहा है मिजोरम के हाफ में. एक बार पास मिला वहां पर बीना कुमारी के पास, कप्तान छोटे कद के हैं लेकिन फुर्तीली, चौकन्नी, और तिरछा पास देकर उन्होंने इस बार फिर गेंद को निकाला अपने पास. फिर बीना कुमारी जा रहे हैं पोजीशन लेने के लिए, जबकि वहां गेंद बाई छोर पर विकर के रूप में पहुंची है खिलाड़ी, और जब तक कि वो गेंद को ठीक में मारे वहां पर बचाव के लिए खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन वहां जो पास आया उसे लेने के लिए तैयार नहीं थी नेम किचोई वो किक, और वो मुकाबला जो ऐसा लगा जो एक मौका बन सकता था वो मौका जाता रहा. लेकिन निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि जो पास, तिरछा पास वहां पर बिल्कुल कगार से दिया था टच लाइन के, वो अगर खिलाड़ी ले पाता तो शायद मिजोरम यहां पर 1-0 की बढ़त हासिल करने की चेष्टा कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. और जब होता नहीं है तो क्यों नहीं हुआ ये कहना बहुत मुश्किल है. और कोई भी खेल जब तक अंतिम समय तक नहीं पहुंच जाए उसे निर्णायक तौर पर बताना असंभव. फिलहाल खेल चल रहा है यहाँ झारखंड के हाफ में, और पहली बार ऐसा लगा कि वहाँ पर मिजोरम की टीम ने अपना दबदबा रुतबा बनाया है, और फिर जा रहे हैं वहाँ पर बाएं छोर से आक्रमण करती हुई तेज के साथ खिलाड़ी, छकाया अपने प्रतिद्वंदी को, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर गेंद को अपने पोजीशन में लिया, फाउल दिया वहाँ पर, और यहाँ पर फ्री किक दी गई है झारखंड के पक्ष में. तो निश्चित रूप से संघर्ष और स्तब्ध खामोश स्कूली छात्र और दर्शक जो आए हैं दिल्ली और आसपास के नगर से इस मुकाबले को देखने के लिए, सन्नाटा, और जब शोर होता है, जब खिलाड़ी गेंद लेकर गोल पोस्ट में भागते हैं तो एक शोर उमड़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली.
0: फॉर द बेनिफिट ऑफ लिसनर्स हु माइट ट्यून इन फॉर द सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट फाइनल इन विच एनसीसी स्प्रिंगफील्ड हायर सेकेंडरी स्कूल is now making strides into the D, but a timely intervention again from the goalkeeper, and what a fantastic job the goalkeeper from NCC is doing. She is keeping the team in the game. She has been able to strike out danger not twice, not thrice, but 4 times in this first half. And the fourth corner now for NCC. Player number 10, Bina Kumari, the captain, now on the ball duties to take the corner. She's put in some dangerous cross in the box. The defenders coming up the pitch now, making sure the right jump is made and contact is made, but this delivery rather close to the goalkeeper, and a routine save as the ball is kicked out with good distance across the centre line. Anushka Kumari, who is on 11 goals, is spearheading the attack for St. Patrick's School, Gumla, Jharkhand. While NCC from Springfield, Mizoram, playing their first ever final in the Subroto Cup International Football Tournament. In 2022, they were knocked out at the group stages. 2023, knocked out by Jharkhand in the semi-final.

0: 2024 group stage win, and now in the finals. So this will be a remarkable achievement if NCC do really score and get on to something.
1: बिल्कुल, पूरा पूरी अपने तरफ से कोशिश करती हुई ये लड़कियां अंडर 17 और यहां पर इस बार पोजीशन में और तेजी के साथ लेकर आगे बढ़ती हुई, लेकिन किस तरह से वहां पर गिर कर खिलाड़ी को रोका, शायद फाउल करार दिया क्वीन इस समय पक्ष में झारखंड के। और जिस तरह से खिलाड़ी वहां पर बाएं फ्लैंक से आक्रमण करती हुई नजर आई थी, कप्तान बीना कुमारी जो कि सेंट्रल मिडल मिडफील्डर है और काफी तेजी के साथ आक्रामकता के लिए जानी जाती है, बहुत ही पूरे टूर्नामेंट में उनका जो मुकाबला रहा, पूरा प्रदर्शन रहा, बहुत ही सराहनीय रहा और सारी प्रतिद्वंदी को उन्होंने चकाचौंध करते हुए वहां पर अपनी तरफ से गोल पोस्ट में गोल दागे थे। लेकिन फिलहाल यहां फिर हाफ में खेल चलता हुआ झारखंड के दाहिने तरफ से प्रतिद्वंदी की तैयारी, पास दिया लेकिन गलत पास, चिप करते हुए हवा में तैरती हुई गेंद पहुंची तब तक की विपक्षी टीम के पास। यहां पर फिर से मौका, जबकि 7 नंबर की जर्सी पहनी हुई खिलाड़ी सोनल मुंडा इस समय वहां पर बचाव के लिए, लेकिन एक ही खिलाड़ी वहां पर है, क्या ये खतरा हो सकता है? दबाव बिल्कुल झारखंड के पक्ष में, लेकिन क्लियर करते हुए खिलाड़ी ने वहां पर गेंद को निकाला गोल पोस्ट के बाहर। जी से खतरा टालती हुई वहां पर नजर आई सिम सांग कुई कुई इस समय खतरा बरकरार रखती हुई झारखंड की टीम के लिए, लेकिन अच्छे तालमेल अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पर मिजोरम की टीम ने प्रतिकार किया था और आक्रामकता दिखाई थी पहली बार। और जब आप आक्रामक होकर खेलते हैं, जब आक्रामकता के साथ आप खेलते हैं तो विपक्षी टीम आपके दबाव में आ जाती है, ये साफ यहाँ पर नजर आया। पहली बार बिखरती भी नजर आई झारखंड की टीम इस मुकाबले में।
0: सुपर फ्लैंक प्ले फ्रॉम झारखंड दिस टाइम, जर्सी नंबर 7 स्ट्राइडिंग डाउन द राइट फ्लैंक, मेकिंग इनरोड्स बिहाइंड द डिफेंस लाइन एंड बाय द टच लाइन वाज एबल टू मेक दैट टाइमली क्रॉस, बट जस्ट व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट द फाइनल फिनिश, द फाइनल पीस ऑफ द पजल मिसिंग देयर, अदरवाइज झारखंड वुड हैव बीन ट्रेलिंग इन दिस गेम। Another through ball attempt from jersey number 9, who has been instrumental in running the show for NCC, their first ever final, and what a show this is. Midway into the first half, the score remains NCC 0 and Jharkhand 0. Jharkhand trying to dominate the ball in the middle of the park by the means of Beena Kumari, who has been quite a dominant force throughout the tournament, and she is making sure she is holding the team in the right spirits. She is dictating the game from the midfield as another ball goes out for throw, this time in the defense line for Jharkhand is jersey number 8, jersey number 11, who have been instrumental and dominant in this journey so far leading up to the finals. So for NCC, building up to the final, 6 matches played, 5 wins, 1 draw and 0 losses. That speaks a lot about their performance in the tournament. Total goals scored 41, and here's the magic number, only 4 goals conceded. So the defense of NCC has been instrumental, and this is what has got them to the first ever finals. Jharkhand, again, who has been a dominant force, who have scored 43 goals leading into the final, the highest number of goals scored by any team in this category of junior girls under 17, finding it difficult to make inroads, find the breakthrough in the final clash, because the Jharkhand defense is standing strong. The right back, center back, left back and the central midfield player by the captain of NCC, Mizoram, holding the ground, putting in some hefty tackles, not afraid of the sluggish conditions out here at the historic turf of the B.R. Ambedkar Stadium. And what a pleasant evening this is, right in the middle of the first half. Ball now in the middle of the park with player number 9 for NCC, trying to make strides, but is timely defended well by the Jharkhand's playmaker, muscling into the tackle, bulldozing her opponent, completely outwitting, and then able to play a nice through ball on the right hand side flank. Can this turn out into something? And another opportunity goes begging. This has been the story of the first half so far. We have seen some interesting attacking moves, attack after attack from Jharkhand, but the moment when it matters the most, the moment when the opportunity arises to make that final cutting edge pass into the final third, the defense has stood strong for both the teams. Now a dead ball, a set piece situation on the right flank for Jharkhand. Can they make the most of this opportunity? Archana Dung, the goalkeeper, motivating the team from behind. trying to show the direction for them.

0: but this opportunity goes begging, and a goal kick is what it turns out to be.
1: निश्चित रूप से यहाँ पर मिजोरम की टीम जो कि गोल किक वहाँ पर एक फ्री किक के रूप में जो मिली है, देखना कि यहाँ पर कितना दबाव अपना डाल पाती है, जबकि निश्चित रूप से संघर्ष यहाँ पर इस समय चल रहा है। चार नंबर के खिलाड़ी सिंसान को उन्होंने पास दिया था, लेकिन वहाँ खिलाड़ी नहीं था प्रतिद्वंदी टीम का कि उसे रोक पाए, इसलिए ये मौका वहाँ पर जाता रहा। लेकिन निश्चित रूप से ये मुकाबले जो यहाँ पर खेले जा रहे हैं संघर्ष मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, और निश्चित रूप से ये जो 65वां संस्करण है जो ये टूर्नामेंट का आयोजन जो जैसे कि हमने कहा पहले ही आपको कि ये टूर्नामेंट आयोजन भारतीय वायुसेना स्पोर्ट्स पर्सन बोर्ड और सुब्रत मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 65वां साल इस टूर्नामेंट का, और पिछले साल की विजेता टीम इस टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी है, जो कि गत विजेता पेटकुची हाईस्कूल गुवाहाटी की टीम 64वां संस्करण उन्होंने जीता था। फिलहाल टीम में वहाँ पर आपस में बातें करती हुई खिलाड़ी की किस तरह से खेल को आगे बढ़ाया जाए, और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का सवाल है, भारत अभी भी काफ़ी पीछे है, काफ़ी उसमें भारत को प्रगति करना बाकी है। हालांकि वही सोच थी वहाँ पर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ सुब्रत मुखर्जी की कि ग्राउंड लेवल से इस खेल को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भारत अभी भी काफ़ी पीछे है, और पिछले कई वर्षों से जो कोशिश की जा रही है फुटबॉल को आगे बढ़ाने की और खेलों को आगे बढ़ाने की, शायद वो अब रंग लाएंगे। फिलहाल यहाँ पर पास देते हुए बाएं तरफ से निकालने की कोशिश की थी, दाहिने तरफ पर नौ नंबर की खिलाड़ी वहाँ पर जो थी आयरिन, उनसे चूक हुई, और फिर यहाँ पर पोजीशन के लिए सिमसांग हुई, यहाँ पर किक के लिए बिल्कुल टच लाइन पर थ्रो इन करती हुई पास दिया हल्का सा, क्या वहाँ पर झारखंड की टीम उन्हें आगे बढ़ने से रोक पाएगी, जबकि आगे बढ़ती हुई वहाँ पर आयरिन हल्का सा छिप, लेकिन खतरे से बाहर झारखंड के हाफ में चलता हुआ एक खेल, और ये फिलहाल गोल लाइन से बाहर की तरफ। तो जो मुकाबला चल रहा है इस समय, दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं, सेंटर फॉरवर्ड और अटैकर जो हैं वो पूरी तरह से अपने तेवर दिखाते हुए यहाँ पर झारखंड के नजर आए। तीन चार मौके ऐसे थे जब बी लाल रोहतसंगी जो कि गोलकीपर है, उन्होंने गोल पोस्ट में जाने से गेंद को रोका।
0: Not enough bodies, Mahesh, in the final third or in the penalty box. Whenever NCC is making any sort of crosses into the box, they are playing with one target man in the form of the frontline player, jersey number 9. But she is able to run the channels but not find the ball with precision. And now Jharkhand on the front foot. Jersey number 11 striving hard on the left flank into the D box. Here comes an opportunity! Turned inside! The deadlock is broken, finally! A fantastic piece of football played on the flank. Jersey number 11, Usha Kumari with the breathtaking run. Jharkhand 1, NCC 0. This is what NCC absolutely dreaded of, to go back in the game, because then it will be absolutely difficult to get back. And from number 1, attack after attack, penetrating the defense, finally able to cut through on the left flank, 11th player number able to make that final decision, and the most intruding pass on the final third turned in for a goal. What a fantastic piece of football, Mahesh, this to turn in the goal for Jharkhand.
1: Bilkul, bilkul, bahut hi acha pass diya tha wahan par, aur Usha Kumari ne use puri tarah se bhunate hue goal post mein daagte hue pehli badhat yahan par 1-0 ki dila di apni team ko, aur manna padega jis tarah ka coordination wahan par dekhne ko mila Hina Kumari aur उषा कुमारी के बीच में, उसकी वजह से वो पहला गोल वहाँ पर झारखंड की टीम करने में कामयाबी हासिल की, और जैसे ही गोल हुआ वहाँ पर तेवर फिर तेज होते हुए नजर आ रहे हैं झारखंड की टीम के, पूरे मुस्तैदी के साथ चुस्ती फुर्ती के साथ सारे खिलाड़ी लगे हुए दबाव बरकरार रखते हुए वहाँ पर मिजोरम की टीम को, आज पहला गोल यहाँ पर बढ़त हासिल करते हुए झारखंड की टीम ने 1-0 की बढ़त यहाँ पर हासिल कर ली है। मनीषा टुंग उन्होंने एक गोल दागा था गोल पोस्ट में, और निश्चित रूप से सराहनीय काम उनका रहा, तिरछा पास आ रहा था लहराता हुआ, और उसे पूरी तरह से भुनाते हुए अपने दाहिने पर से हल्का सा चिप करते हुए उन्होंने गोल पोस्ट में ताकते हुए 1-0 की बढ़त अपने टीम को दिलाई।
0: मनीषा टुंग देन मेंटेनिंग हर पोजीशन एज द सेंटर फॉरवर्ड ऑफ द टीम, मेकिंग दैट पेनिट्रेटिंग रन व्हेन इट

0: wanted the most, anticipated the low cross from player number 11 in the form of Usha Kumari, and Usha Kumari was able to find with precision the final pass, the missing pass that was so badly needed for Jharkhand to take the lead in this final clash of the 65th edition, beg your pardon, of the Subroto Cup International Football Tournament. NCC in yellow now, trying to get their game together. The goalkeeper has though been the standout. But for her, the scoreline would surely have been 3-0, 4-0. But for the goalkeeper of NCC, the goal line is still at mere 1-0 in favour of Jharkhand. Jharkhand now definitely with their tails up, attacking the final third. Some menacing passing we've seen already from the midfield, through the lines, on the flanks. Another one goes by, an opportunity for set piece now. Multiple throw-ins we've seen from the far end haven't translated to something of quality. Again, a whipped in cross. Free space is for jersey number 12. What can she do now with the ball? Fantastic close control. Cuts in, goes outside, puts the ball into the penalty area. Comes in for the defender. A looping header over the ball and is met by the goalkeeper. Another important save by the NCC goalkeeper. Still not out of danger. And finally out of danger now. NCC defenders putting their bodies on the line. And now it is a situation of anything will do. The clearance will go anywhere. Not making to do any control passes is the situation of NCC.
1: बिल्कुल, और एनसीसी की टीम ये पूरी तरह से अपना संघर्ष बरकरार रखते हुए यहाँ पर नजर आ रही है, और चाहिए खिलाड़ियों को छोटे छोटे पासेस दें, एक कोऑर्डिनेशन बनाए और उसके बाद आक्रमकता की तैयारी करें, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, हड़बड़ाहट थोड़ी सी नजर आ रही है जहाँ तक एनसीसी मिजोरम का सवाल है, और वो हड़बड़ाहट जल्दबाजी जो बीच मैदान पर होती है उससे आपको बख्शी टीम को मौका मिल जाता है आप पर हावी होकर खेलने का, और उसका पूरा फायदा यहाँ पर झारखंड की जो अटैकिंग खिलाड़ी हैं पूरी तरह से लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना है कि इस जो मौका मिला है किक का वहां पर कितना फायदा लेते हैं। हालांकि एक दो तीन खिलाड़ी गोल पोस्ट के अंदर मौजूद है, कोई भी गलती हेडर या छोटा सा पास चिप के रूप में गोल पोस्ट में दागने की कोशिश हो सकती है, लेकिन हुआ नहीं, क्लियर पास किया वहां पर सेंटर फॉरवर्ड से, सेंटर लाइन से आगे बढ़कर रोकने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल यहां पर अकेली एकमात्र प्रतिद्वंदी आगे बढ़ती हुई यहां पर मिजोरम की नेम किचोई हो को, लेकिन सफल नहीं हो पाई गोल पोस्ट में पहुंचने तक। वहां पर बिल्कुल समय के साथ बाहर निकाला और उषा कुमारी ने ये जो राइट मिडफील्ड में खेल रही है उन्होंने अपने टीम का बचाव किया, लेकिन फिर से यहां पर पास, तिरछा पास, और क्या यहां पर गोल कीपर जो है खुशबू कुमारी उन्होंने आकर वहां पर गोल पोस्ट के अंदर ही गेंद को पहले रोक लिया था। जो खतरा हो सकता था वो खतरा पूरी तरह से टलता हुआ नजर आया। जहां तक झारखंड का सवाल, सर्कल मिड सर्कल पर खेल चलता हुआ अच्छी तालमेल समझ खिलाड़ियों के बीच में यहां पर साफ नजर आ रही है। झारखंड के खिलाड़ी कटिबद्धता के साथ, मजबूती के साथ, उनके बीना कुमारी, मनीषा डोंग, खुशबू टिक्का और सीमा अरोन के बीच में अच्छी तालमेल नजर आई।
0: खुशबू कुमारी हैजंट हैड मच टू डू सो फार इन दिस गेम। Her only role so far has been collecting balls and putting it for goal kicks. I think this is what NCC will have a specific team talk during the half. How can they make more attacking positions? How can they get the ball in dangerous situations is what surely will be the team talk and the head coach will focus on. The score, Jharkhand 1, NCC Mizoram 0. We are in the final stage of the 65th Subroto Cup International Football Tournament. Junior girls under 17, the division.
1: थोड़ा सा खामोश इस समय फुटबॉल का ये मुकाबला चल रहा है संतम, और सेंटर में इस समय संतो से हद भी खिलाड़ियों के बीच में एक गोल पोस्ट की तरफ भागने की कोशिश, लेकिन लाल वत्संगी उन्होंने गोल पोस्ट को जाकर अपने बचाव किया। फिर टच लाइन से बाहर पहरेदारी करते हुए जो रेफरी नजर आ रहे हैं सर्जन एस शरत रामलान और असिस्टेंट रेफरी कॉर्पोरल स्टीफन और उत्पल बोरा इस मैच की फाइनल मुकाबले की यहां पर रेफरी कर रहे हैं। तीसरा पास लेकिन वहां पर हवा में लहरा था वो चीप जब तक अपने खिलाड़ी के पास

0: पहुंचे उसे सीमित करें, 10 लाइन के बाहर निकलते हुए गेंद वहां पर क्वीन करने के लिए पहुंची है सिमसान क्वीन। देखना कि क्या यहां पर अच्छा थ्रो मिलेगा और उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। जहां तक मिजोरम के खेल टीम का सवाल है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल राइट फ्लैंक में खेल चलता हुआ विंगर वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद बचाव किया और एक हल्के से किक के साथ आगे बढ़ाते हुए विपक्षी टीम के हाफ में प्रवेश करते हुए फिर से झारखंड की नजर आ रही है।
1: A chance now. A through ball made behind the line, but once again the story of the first half, goalkeeper from NCC reading the situation early and eliminating the danger completely. And as the game goes on in the middle of the park, we are honored to have the presence of some of the top brass from the Indian Air Force. The Subrata Cup is conducted by the Air Force Control Board. An opportunity here for NCC, a tackle made, expecting the referee to make a decision, but nothing doing, says the referee. The match official, the referee in the form of surgeon Sharath Lamkang, is now observing the player on the ground. A good time out for the NCC players to re-strategize on how they want to take this game ahead. No free kick was given in that moment. A dead ball situation now. Ball is back with the goalkeeper Khushbu Kumari for a goal kick. And coming back to the organization of the tournament, which is the ultimate grassroots football level in the country. Interesting bit of footwork on the right flank by Beena Kumari, and the ball is lifted high in the air into the stands, and a wild roar from the children, the students attending this football match from various schools across New Delhi. Initial editions, Mahesh, of the Subrata Cup were organized by the Durand Football Tournament Committee in 1994. However, the Air Force Control Board took over the Subrata Cup tournament and ever since has been conducting this tournament in a fabulous way. Preliminary inter-school tournaments are organized in every state, focusing on grassroots talent across multiple divisions, with focus on penetration within the length and the breadth of the country, going to small villages, district division, culminating finally in inter-school finals at the state level. Again, some good show on the right-hand flank by Usha Kumari, trying to put a low thundering cross across, but is nicely defended and put out another for a throw-in by the NCC player, jersey number 8.
0: बिल्कुल संतानु, जैसे कि आपने जिक्र किया, कई लगभग 25,000 से ज़्यादा स्कूल हैं या हायर सेकेंडरी स्कूल इस टूर्नामेंट में अभी तक पार्टिसिपेट करते नजर आई हैं, जबकि यहाँ पर हाफ टाइम का वक्त हुआ है। और जैसे टूर्नामेंट की सफलता के बारे में हम कहें, ओवरसीज टीमें भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हुई नजर आई, स्वीडन, ब्राज़ील, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, इसराइल, भूटान, श्रीलंका। और विशेष रूप से ये मध्याह्न का समय यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है और 1-0 की बढ़त के साथ यहाँ पर झारखंड की टीम ने बढ़त हासिल की।
1: एंड एज द व्हिसल इज ब्लोन बाय सर्जन शरद लमकवांग, द फर्स्ट हाफ एंड्स, झारखंड इन द लीड, झारखंड 1 एनसीसी 0।
0: मिजोरम की टीम ने भी अपने तरफ से संघर्ष किया और जहां तक खिलाड़ियों के इंडिविजुअल का प्रदर्शन का सवाल है, 65वें सुब्रतो कप 2026 में जूनियर गर्ल्स अंडर 17 के जो पहले मुकाबले खेले गए सेमीफाइनल में एनसीसी स्प्रिंगफील्ड मिजोरम बनाम छत्तीसगढ़ का जो मुकाबला खेला गया था, वहां पर मिजोरम के लाल थल गुल अंकुई इन्होंने मैच का पहला गोल दागा और पूरे मैच में उन्होंने आक्रमकता दिखाई और लाल रोजामी एनसीसी के मैच के निर्णायक कोड पर उन्होंने दूसरा गोल करके अपने टीम को फाइनल में जगह पक्की की और 2-1 से वो सेमीफाइनल का मुकाबला उन्होंने जीता था। और जहां तक सेमीफाइनल दूसरा नंबर का जो खेला गया था झारखंड बनाम सीबीएसई, उसके बीच में 2-0 की बढ़त वहां पर झारखंड की टीम ने हासिल की। उसमें अल्फा कंदुलुना विपक्षी रक्षा पंक्ति को भेद देते हुए उन्होंने पहला गोल जागा था, और जबकि अनुष्का कुमारी मैच का दूसरा गोल करके झारखंड को 2-0 की उन्होंने बढ़त दिलाकर अपने टूर्नामेंट अपने टीम को इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचाया।

0: और निश्चित रूप से ये टीम है दोनों ही मजबूत टीम है। जैसे कि आपने पहले जिक्र किया कि झारखंड की टीम ने 41 गोल आगे वहाँ पर मिजोरम की टीम ने, लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ जो गोल हुए वो काफ़ी नगण्य से 4 और 6 को ज़्यादा बड़े मायने नहीं रखते। तो समतुल्य एक ही शक्ति की और आक्रामकता के तेवर दिखाने वाली दोनों टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल में यहाँ पर नजर आ रही है। और श्रोताओं को मैं जानकारी देता हूँ कि पहला मध्याह्न का समय जब हुआ है वहाँ पर झारखंड की टीम ने 1-0 की बढ़त के साथ यहाँ पर अंक तालिका में अपनी बढ़त बनाई है।
1: सर्टनली मनीष, एज यू मेंशनड, एनसीसी Springfield Higher Secondary School, the team from Aizwal, Mizoram, has surely been the breakout powerhouse team of the 65th Subroto Cup edition Junior Girls Under 17 category, representing the NCC Directorate Northeast Region, and have surely captured national attention with an incredibly dominant and high scoring run to the grand finals. If you look at the 2026 Subroto Cup, a juggernaut run with a mind blowing goal difference across 4 group stages. The first group stage match played on the opening day of the division on 18th August, NCC versus Jammu Kashmir, with a staggering score line of 19 goals. Played at the RFG, their second group match versus Haryana was another high scoring tie with 6 goals scored and 0 conceded. To follow that up, they faced Uttarakhand on the 28th August and scored 5 goals. So they've had 3 matches on the trot with high score lines, conceding goals, scoring goals. NCC in the knockout stages scored 6 goals versus Meghalaya in the first knockout match in the form of quarterfinals, and then just recently in the semi-final clash defeating Chhattisgarh by 2-1.
0: जबकि हम जिक्र कर रहे थे इस मुकाबले का, जहां पर मध्याह्न के समय झारखंड की टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। हमारे कमेंट्री बॉक्स में इस समय हमारे गेस्ट इस समय ऑनरी सेक्रेटरी जनरल SMSES के विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी यहां पर आए। आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं सर, सारे श्रोताओं की तरफ से और आकाशवाणी के जरिए जो लोग इस समय कॉमेंट्री को सुन रहे हैं, मैं सतेंद्र सिंह जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ।
2: धन्यवाद
0: सर जी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से टूर्नामेंट का आयोजन होता रहा है, 65 साल हो गए इस टूर्नामेंट को, तो इस टूर्नामेंट की कामयाबी के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि क्या दिलेरी और क्या जोश रखकर आप इस टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं।
2: ये देखिए, हमारा मानना है कि फुटबॉल जो है या कोई भी स्पोर्ट है वो ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होता है। हमें हमारा मानना है कि कोई भी गेम हो वो हर चीज़ ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट होती है। तो हमारी कोशिश रहती है इस टूर्नामेंट के ज़रिए कि हम देश के कोने कोने तक इस टूर्नामेंट को पहुंचाएं। ये टूर्नामेंट हर स्टेट से ये टीम आती है हमारे पास, और जो बेस्ट होती है वो फाइनल्स में होती है, जो आप देख रहे हैं आज।
0: सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी के माध्यम से जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे बालक इस समय इस कॉमेंट्री को सुन रहे होंगे, तो इस मुकाबले के लिए जो टीमें चुनी जाती हैं, खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है, तो इसकी तैयारी आप कैसे करते हैं, किस तरह से ग्रास रूट लेवल पर आप खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं?
2: देखिए, आज हम अगस्त एंड में बैठे हैं। ये जो टूर्नामेंट है 8 से 9 महीने पहले स्टार्ट हो जाता है। जनवरी दिसंबर से डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल से स्टार्ट होते हुए स्टेट लेवल पे फाइनली एक स्कूल की टीम पर स्टेट रिप्रेजेंट करती है। तो आप देखिए कितनी कड़ी मेहनत करते हैं बच्चे। पिछले 6 से 7 महीने का जो परिश्रम है वो आज आपको फुटबॉल ग्राउंड पे दिख रहा है।
0: निश्चित रूप से आप लोगों का जो परिश्रम है ये कामयाब, लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा सर मैं थोड़ी सी नाराजी होगी, हालांकि कहना अच्छा नहीं होगा, लेकिन 65 साल लगभग 1960 से खेल की शुरुआत हुई, आज 65 साल हो रहे हैं इस टूर्नामेंट को, लेकिन जो एक और ज़्यादा प्रोत्साहन फुटबॉल को मिलना चाहिए था, इसके बाद ग्रास रूट से आप तैयार करते हैं, लेकिन आगे जाके खिलाड़ी कहीं अलिप्त हो जाते हैं, गुम से हो जाते हैं, तो इसे आगे बढ़ाने के लिए और क्या कोशिशें की जा रही है?
2: देखिए, मैं आपकी बात को मानता हूँ और नहीं भी मानता हूँ, दोनों चीज़ बोलूँगा। हमारे यहाँ सुब्रोटो कप से बड़े बड़े दिग्गज एयरफोर्स के इंडिया के प्लेयर लाइक बैचिंग भूटिया यहीं से निकले हैं। दालिमा छिब्बर जो करंटली इंडियन टीम की पार्ट हैं, वो भी यहीं से निकली हैं। तो हम

0: इस टूर्नामेंट के माध्यम से डेफिनेटली हम उनको स्काउटिंग करते हैं सो दैट वो आगे से आगे बढ़े टीम में, इंडियन टीम में या अलग क्लब्स के लिए खेले। तो कोशिश जारी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है और हम श्योर हैं कि हम कहीं ना कहीं मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे।
1: फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी एयर, वी हैव द एब्सोल्यूट प्लेजर ऑफ हैविंग विद अस द ऑनररी सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी, विंग कमांडर सतिंदर सिंह धनखेर। Sir, very good evening, and on behalf of and for the benefit of all the listeners, all the young fans of India in football, please, sir, highlight on how the Air Force has been instrumental in organizing the Subroto Cup, which is the most important grassroots football over such a long period of time.
0: A very good evening. This tournament started in 1950. In the memory of late Air Marshal Subroto Mukherjee, and it was titled by then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. And you see, from that niche beginning, today already more than 25,000 schools have participated in this tournament, and 60,000 plus students have been part of this tournament. It's a long journey, and we are continuing. In this edition also, we had 36 teams from for under 17 girls. We have 36 teams from across India, and today the best have reached the finals.
1: Absolutely, and some notable names in Indian football, the likes of Shyam Thapa, Sunil Chhetri, Bhaiching Bhutia, and a lot many we have in attendance today. Jyoti Barrett, who's also an Indian national footballer, who first kicked the ball on this turf of the Subroto Mukherjee International Football Tournament. So how motivating does it feel for all the young students, children participating in the tournament?
0: I will be short of words. You can see the huge noise which these kids are creating. Definitely the kids who are in the stands tomorrow, they will be definitely in the ground, and they are motivated, highly motivated, and we see these young children becoming part of Subroto very soon.
2: सर, और जो आपने नाम लिए उसमें कई नाम हम ऐड करना चाहेंगे, जो हरजिंदर सिंह, वीपी सत्यम, श्यामल बैनर्जी, उत्पल राज, जैकी चंद सिंह, टीपी रमेश, कई नाम आपने दिए हैं। और निश्चित रूप से सर, अब खेल शुरू होने की स्थिति में है, मैं आप हमारे कॉमेंट्री बॉक्स में आए और सत्येंद्र सिंह जी, आपने हमसे बातें की, आपके आने वाले भविष्य के जो टूर्नामेंट उसके बारे में भी थोड़ा सा आपने जानकारी दी कि किस तरह से खिलाड़ी को तैयार किया जाता है, आप कॉमेंट्री बॉक्स में आए। आकाशवाणी की तरफ से मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सर।
0: धन्यवाद।
2: सेकेंड हाफ का खेल यहाँ पर शुरू होता हुआ, जबकि वहाँ पर सेंटर लाइन पर बिल्कुल गोल पोस्ट की तरफ नजरें गड़ाई खिलाड़ी खड़ी हुई हैं इस समय स्काई ब्लू में। 7 नंबर की खिलाड़ी सुनेला टुड्डू, जबकि देखना है कि क्या वो सोनल मुंडा है, और वहां पर पास दिया उन्होंने बैक पास के रूप में पहली बार। और अब क्षेत्र बदल गया है, दोनों साइड चेंज हो गई हैं, जहां पर झारखंड की टीम थी वहां पर अब मिजोरम की टीम खेलती हुई नजर आ रही है। सेंटर का समय ने मध्यान्ह के समय में 1-0 की बढ़त हासिल थी वहां पर झारखंड के पक्ष में, लेकिन फिलहाल उस बढ़त को आगे बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है उसमें अब अभी अभी अभी खेल की शुरुआत ही, देखने की क्या मंत्रणा वहां पर, क्या सलाह उनके कोच ने, दोनों ही टीमों के कोच ने अपने पे टीम को दिया होगा। जहां तक कोच का सवाल है, इसमें झारखंड के लिए उनके कोच बिना कैरकेटा और मिजोरम के लिए कोच हैं लाल रुंझोली। तो देखना है कि कोच ने क्या सलाह दी है, किस भावना के साथ अब इस खेल को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जबकि मध्याह्न का समय के बाद अभी अभी खेल की शुरुआत हुई है, तो ज्यादा आक्रामक अभी तक नजर नहीं आए खिलाड़ी, और निश्चित रूप से ये समय थोड़ा सा मैं समझता हूं कि झारखंड के लिए ऐसा होगा कि यहां पर उनको बढ़त थोड़ी सी बढ़ाने की कोशिश करनी होगी।
1: As the ball starts rolling in the second half of this final encounter clash of the Junior Girls Under 17 Subroto Mukherjee International Football Tournament 2026, the 65th edition unfolding right in front of us. The floodlights are now beaming down on the historic turf of Dr. Ambedkar Stadium, and what a venue this is proved to be in Indian football history, as the run is made from the Jharkhand player inside the D, but not the pass that the attacker would have hoped for. The ball was played just behind the attacker, retracting back the player in front of the goal.

0: And the opportunity goes begging. A similar start to the second half as we've seen in the first half. Jharkhand dominating the ball, dominating the higher areas of the pitch, making it difficult for NCC to come out of the stride after the break. We are broadcasting live from a venue soaked in the rich, unmatched history of Indian football, the iconic Dr. B.R. Ambedkar Stadium, tucked right next to the Arun Jaitley Stadium and the historic walls of Firoz Shah Kotla. This stadium, this turf, has certainly seen some great moments in the nation's sporting and especially football history. This pitch, so to say, is the same pitch where the senior Indian national team lifted the historic Nehru Trophy in 2007 and 2009 under the roaring chants of 20,000 fanatic fans, which is the capacity of the stadium. New Delhi's Ambedkar Stadium, the spiritual home of football and which has tested the boots of several Indian great legends. And today, the final clash for the 65th Subroto Cup International Football Tournament. An absolutely packed house here at Delhi Gate, creating an absolute pressure cooker environment for these young athletes. And as we head into the progression of second half, with the onus now on NCC to score a goal. Jharkhand leading with 1-0, scoring in the first half in the form of Sunaina Tundu, their frontline attacker, showing presence of mind and the calm that was required in front of goal. NCC now trying to play from behind, a slight tweak in the strategy which is very notable from how they played in the first half. Mahesh, now you see that NCC is trying to build the ball from behind, build the attack in a more synchronized manner than what they were playing in the first half.
1: बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोच लाल रोंझेली उन्होंने कुछ सलाह दी होगी कि आपको थोड़ा सा आक्रामकता दिखानी होगी और आक्रामकता दिखाएंगे तो ही आप गोल कर पाएंगे झारखंड जैसी टीम के खिलाफ. तो शायद वो आक्रामकता यहाँ पर नजर आ रही है. अटैकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हुए कि दबाव में लाए झारखंड की टीम को, लेकिन फिलहाल कोई कामयाबी तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही है. 1-0 की बढ़त अभी भी पक्ष में है झारखंड के. और सैमसंग पुई और वायलट लाल रोहत लुंगी लुआंगी के बीच में ये अच्छी तालमेल यहाँ पर देखने को मिली. पास लेकिन वहाँ पर क्लियर करते हुए अपने पेनाल्टी बॉक्स में जाने से रोका वहां पर अब मीना कुमारी आगे बढ़ती हुई, जबकि बचाव के साथ यहां पर अब मिजोरम की टीम अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है उनकी कि किसी भी तरह से ये जो 1-0 की बढ़त झारखंड के पास मौजूद है सबसे पहले उसे इक्वल किया जाए. दोनों ही टीमें समतुल्य आक्रामकता और प्रभाव से भरपूर टीम है. जैसे कि लीग मैचेस में हमने कहा कि 41 गोल अगर मिजोरम की टीम ने किए तो 43 गोल वहां पर झारखंड की टीम ने किए हैं. और प्राइज विनर की अगर बात करें, प्राइज मनी की बात अगर करें, तो बहुत बड़ा प्रोत्साहन यहाँ पर इस टूर्नामेंट को जीतने वाले को दिया जाता है. विनर को 5 लाख, रनर सबको 3 लाख और सेमीफाइनलिस्ट को 75,000 के इनाम. जबकि यहाँ पर आक्रामक दरमियान गोल पोस्ट में पहुँचते हुए गोल दागने की कोशिश की थी, सफलता हासिल नहीं कर पाए, लेकिन जो खतरा था वहाँ पर साफ नजर आया. अभी भी गोल पोस्ट में वहाँ पर गिरी हुई नजर आ रही है गोलकीपर खुशबू कुमारी, जिन्होंने अच्छा बचाव किया था वहाँ पर, लेकिन समझता हूँ कि ये जो चोट लगी है उन्हें ज़्यादा गहरी न हो, ज़्यादा गंभीर न हो. अभी भी जमीन पर गिरी हुई हैं और उनके जो इस समय डॉक्टर्स हैं, फिजियो हैं, वो बीच मैदान पे पहुंचे हैं. देखना है कि किस तरह की तैयारी करते हैं. हालांकि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो आपके जो रिजर्व गोलकीपर हैं अर्चना दुंग को निश्चित रूप से तैयार रहने की सलाह दी होगी. ये चोट ज्यादा गंभीर न हो संतुन, मैं यही अपेक्षा करता हूँ.
0: यस सर्टनली, दिस इज वॉट द झारखंड प्लेयर्स एंड द टीम मैनेजमेंट विल होप फॉर. मेरिक्स ऑन द टीम नाउ गिविंग अटेंशन टू खुशबू कुमारी. खुशबू कुमारी हैज हैड अ रादर a lazy evening, so to say, in goal, with nothing lot to do. Not much of attacking menace by NCC in this game. And thus far, Jharkhand have been the dominating force of the final clash. As we see Khushbu Kumari now slowly standing up, applauded by her teammates in sky blue, donning the sky blue jersey, the prestigious Jharkhand team who've built resilience, who've built the unbeatable dynasty of this

0: score. Line 2-0 for Jharkhand, but nonetheless, the game remains in balance and still for NCC to come back and show what they have done throughout the tournament. They have only gone back once in this entire tournament, but have shown the ability to come back when mattered in the moment. They've showed the confidence to score a goal. Can that repeat now is the main question, Mahesh.
1: Bilkul. शंतनु जिस तरह से वहां पर एक मौका मिला था, अगर वहां पर सबारनी कुमारी अगर हेडर कर पाती तो गोल पोस्ट में ये गेंद पहुंच सकती थी, 2-0 की बढ़त हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और केवल 1-0 की बढ़त के साथ इस समय झारखंड की टीम हावी होकर खेलती हुई नजर आ रही है। वहां पर एनसीसी मिजोरम की टीम के पक्ष में ही वो हाफ में ही खेल हो रहा है, खतरनाक हो सकता है डी में वहां पर, और यहां पर गोल को पोस्ट में दागने की कोशिश की और उसके बाद ये दूसरा गोल यहां पर अर्जित करती हुई खिलाड़ी नजर आ रही है और तेजी के साथ ये 2-0 की बढ़त ये दिखा रहा है कि यहां पर झारखंड की टीम ने अपने तेवर अपने हौसले यहां पर बरकरार रखे हैं। वहां पर सवर्णी कुमारी उषा कुमारी खुशबू के बीच में अच्छी तालमेल निभी और आखिरकार बाएं पैर फुटेड जिसे कहते हैं बाएं फुटेड पास जो चिप हल्का सा चिप करते हुए यहां पर दूसरा गोल दागते हुए यहां पर झारखंड की टीम ने 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है और ये 2-0 की बढ़त अब यहां से इसे इक्वल करना और उसके बाद में जीतने के लिए गोल करना मैं समझता हूं कि यहां पर अब काफी मुश्किल होने जा रहा है जहां तक एनसीसी मिजोरम की टीम का सवाल है।
0: द इनिशियल शॉट ऑन गोल हिट द अपराइट एंड केम बैक बट Manisha Dung once again was promptly active in the situation and was the first to react to the situation. The reaction to the second ball was immaculate and led with precision to put the ball in a rather empty net. And with that, Jharkhand now lead 2-0. And just moments before, Mahesh, we were having a discussion. The second goal needs to come from NCC to be alive in this fixture. But Jharkhand now seem to be on a roll, have their tails up, attack after attack after attack. The situation came in from a corner, the seventh corner of the match and the fourth corner of the second half. Nicely put in into the danger area, a looped in cross, the initial shot hit the upright, but Manisha Dung, who has so often been there, right place, right time to tuck the ball in a rather empty net, and nothing the goalkeeper of NCC could do. Now a set piece situation for NCC, again off target. These are the moments now in the match, in the dying moments of this final clash. NCC will have to make them count for any sort of comeback they wish to make. It has to be done right now. Time is running out for NCC as we see Sergeant Sharat Lamkhan blowing the whistle and beginning the start of play. NCC in possession. This has to be the story now. They have to maintain and dominate possession, slowly build and make the moves in the finishing final touches and find that pass, find the final third pass, the pass which Jharkhand has able to find on two occasions. This is what NCC now will have to do. Atmosphere absolutely electric here in the B.R. Ambedkar Stadium as another set piece situation. Player number 10 on the dead ball, went in for glory, had multiple options, two options on the right, two options on the left, but she went for glory. And now the ball is loosely played, trying to get clear of the infield area, a player down in the mid-circle, no stop in the game, the referee flows for the game to continue. Another important pass in the final third. Jharkhand now with their tails up, progressing the play on the left flank, goes out for a throw number 62 so far in the match. A lot of throw-ins which Jharkhand have faced, and another start-stop incident in the second half, Mahesh.
1: बिल्कुल शंतनु, जिस तरह से मुकाबला चल रहा है, दूसरा गोल दागने के बाद पूरी तरह से हावी होकर खेलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर झारखंड की टीम, और लगातार एक एक करके वो अपने अस्त्र शस्त्र जिसे कहते हैं म्यान में रखे हुए सारे निकाल कर प्रहार करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह

से पासेस दिए जा रहे हैं, जिस तरह से चिप किए जा रहे हैं, जिस तरह से शॉट्स लिए जा रहे हैं, पूरी तरह से हावी होकर खेलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर झारखंड की टीम। लेकिन फिलहाल इस समय आगे बढ़ती हुई एनसीसी की टीम जो कि बाहर की तरफ गोल लाइन से खेल गई, खिलाड़ी ने कंट्रोल नहीं कर पाए, वायलट लाल रोहन

0: मारने की कोशिश की थी, दर्शकों का शोर उमड़ता हुआ, लेकिन जो अपेक्षा है, जो कोशिश वहां पर खिलाड़ी ने की थी मिजोरम के, अभी भी गोल पोस्ट के बिल्कुल कगार पर गिरी हुई है, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छा बचाव वहां पर। जहां तक खुशबू टिक्का का सवाल है, बीना कुमारी कप्तान खुद थी वहां पर, पूरी तरह से क्लियर पास जिसे कहते हैं वो करते हुए उन्होंने गोल पोस्ट से गेंद को बाहर की तरफ निकालने में कामयाबी हासिल की, और जल्दबाजी में जैसे ही गोल पोस्ट पे दागने की कोशिश की थी वहां पर थुमाई दिनपुई ने, वो नाकामयाबी होती हुई नजर आई, गोल पोस्ट के बिल्कुल कगार से निकलती हुई बाहर की तरफ चली गई। फिर फिलहाल खेल फिर सेंटर सर्कल की तरफ चलता हुआ, और निश्चित रूप से ये हवाई किक, हवाई सफर, देख रहे हैं कि कहां तक। अब मैं समझता हूं कि जो चेहनों में जो बात इस समय होगी झारखंड के, वो यही होगी कि किसी तरह से समय व्यतीत किया जाए, डिफेंस पे ज्यादा जोर दिया जाए, आक्रामकता जब मौका मिलेगा तब करेंगे, लेकिन ज्यादातर गोल पोस्ट का बचाव करना और 2-0 की बढ़त को बचाए रखना, बनाए रखना, मैं समझता हूँ यही सोच इस समय झारखंड की हमारे इस खेल में नजर आ रही है।
1: सडनली महेश, झारखंड विल नाउ लुक टू होल्ड ऑन द लीड दैट दे ऑलरेडी हैव विथ 2 गोल्स फ्रॉम देयर स्टार स्ट्राइकर मनीषा डुंग, एंड जस्ट मोमेंट्स अगो एवरीबॉडी इन येलो थॉट that this was their moment, so close to scoring goal, but a last-ditch tackle from the captain of Beena Kumari, leaning from the front, the Jharkhand captain Beena Kumari clearing the line. And now, as we see a substitution being made, jersey number 15 now coming in for Jharkhand, player number 12 in the form of Simita Oron makes way, and the player continues.
0: गौरी सिंह को अंदर भेजा है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसे खिलाड़ी होते हैं जैसे कि T20 में आप मुकाबले देखते हैं, जो तेवर फास्ट खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं उन्हें ज्यादातर मौके दिए जाते हैं, तो गौरी सिंह एक तेज तर्रार खिलाड़ी हैं, और बचे हुए समय में उनका ज्यादा फायदा लिया जाए, क्योंकि ये खेल ऐसा होता है कि जो खिलाड़ी ज्यादा तेजी के साथ भाग सकता है, आक्रामकता दिखा सकता है, उसे आखिरी समय में जो कोच है वो बीच मैदान पे भेजते हैं, तो गौरी सिंह को बदलाव के रूप में बीच मैदान पे उतारा गया है। देखना कि वो आते ही यहाँ पर क्या तेवर दिखाते हैं, क्या खेल दिखाते हैं। देखिए, आप दौड़ते हुए बिल्कुल गोल पोस्ट के पास पहुंच चुके थे, तो नए जोश के साथ, नए चुस्ती फुर्ती के साथ वहां पर ये बदलाव किए जाते हैं।
1: इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश लेग्स फॉर NCC, दे सर्टेनली नीड सम ब्रिलियंट मैजिकल मोमेंट नाउ इन दिस गेम टू कम बैक एंड पोज अ कॉम्पिटिटिव थ्रेट इन दिस फाइनल। She's influenced the game after coming on just for minutes. Couple of attacks now leading the front line from the right flank. The game now being played in the center half. And now for Jharkhand, it is all about holding on to the 2-goal lead they have in this monumental clash. They certainly now feel that they are within distance of creating history, which no other team, no other school has done in this competition so far. The Junior Girls Under 17 division of the 65th edition Subroto Cup International Football Tournament unfolding right here, right now in the iconic Dr. Ambedkar Stadium. And as the clock is ticking in the second half, another set piece opportunity. Player number 11 now on the dead ball situation. As you see, not many bodies now thrown in attack by Jharkhand. They believe that holding on to the 2-0 lead is sensible in this moment. Game been played and dominated by Jharkhand in the center circle. The head coach now urging the players to keep control of the ball, just play possession football. A second change now here being made for NCC. The coach has got no options but to throw on fresh legs and hope that those fresh legs might bring on something fruitful.
0: संदनु, मैं समझता हूँ कि अब समय धीरे धीरे आगे खिसकता जा रहा है, और ये समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, जीत लगभग तय सी नजर आने लगी है, जहाँ तक यहाँ पर झारखंड का सवाल है। और 2022-2023 में दो उन्होंने जो ये कप जीते थे, फाइनल जीते थे, क्या 2026 उनके लिए यहाँ फिर लकी साबित होगा, ये देखने लायक बात होगी। टच लाइन से बाहर गेंद, इस समय खेल चल रहा है हाफ में झारखंड पे, लेकिन सारे खिलाड़ी संघर्ष पूर्ण तरीके से खेलते हुए नजर आ रहे हैं अच्छे पासेस के जरिए। 2022 में सबसे पहले जीता था उन्होंने, उसके बाद

0: 2023 में मुकाबला जीता था 61वां और 62वां संस्करण, जबकि तीन बार 2017-18-19 में बांग्लादेश क्रीड़ा शिक्षा प्रतिष्ठान ने मुकाबला जीता था। 2024 में होम फील्ड हाईस्कूल हैदराबाद ने मुकाबला जीता था और पिछला संस्करण 64वां संस्करण बेटकुची हाईस्कूल गुवाहाटी की टीम ने जीता था। फिलहाल फिर से एक मौका मिलता हुआ नजर आया था जहाँ पर वहाँ मिजोरम के गोल पोस्ट पे दागने की कोशिश की थी। इस बार फिर दो खिलाड़ी वहां पर मौजूद है लेकिन अच्छा पास वहां पर गोल पोस्ट के बिल्कुल कगार से, जो शोर उमड़ता हुआ हमारे माइक्रोफोन के जरिए शायद आप तक पहुंच रहा होगा। ये शोर इसीलिए कि समय धीरे धीरे आगे बीतता जा रहा है और जो स्कूली छात्र, जो दर्शक यहाँ पर आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, शायद वहां पर ज्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं जीतने वाली टीम झारखंड को, जबकि 7 नंबर की टीम इस समय मिजोरम की बाहर जाती हुई और 13 नंबर की खिलाड़ी इस समय इन होती हुई पीसी लाल रिनलुई। ये आखिरी क्षणों में तेज खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इस खेल में चुस्ती फुर्ती, एबिलिटी टू रन फास्ट, कंट्रोल ओवर द बॉल बहुत जरूरी होता है, तो ये सारे खिलाड़ी उस चीज के लिए जाने जाते हैं। आखिरी मौके पर ये सारे बदलाव कोच ने किए हैं।
1: Another change for NCC in the form of Lal Pinuruhi, who's had a reputation of electric speed on the ground, and which is exactly why the head coach has made her introduction in the dying stages. NCC now with an opportunity on the right flank, cutting in nicely is the player with jersey number 2. This has to be the moment for them, but what fantastic piece of defense again shown by Jharkhand. Showing their prowess, showing their ultimate domination in this format. And the ball rolls out for another throw, this time for NCC. And Mahesh, as we had the opportunity to speak to Wing Commander Satinder Singh, another important personnel in attendance for this game. The finals of the Subroto Cup International Football Tournament, Junior Girls Under 17, we have the honor of the presence of Air Marshal Ashutosh Dikshit, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, Vishisht Seva Medal, Vice Chief of Air Staff, Air Marshal Ashutosh Dikshit, and all the participants of the Subroto Cup International Football Tournament will surely be motivated with the presence of such dignitaries, the top brass of Indian Air Force, making their presence felt.
0: Shantanu, अभी आपने देखा जो एक पास दिया था वहाँ पर कप्तान बहुत ढीलवंगी के साथ, बहुत ही हताहत, जिसे स्ट्रोक कहते हैं, शॉट कहते हैं, उस तरह का उन्होंने लिया। गोल पोस्ट के बिल्कुल बाहर थी, काफी बाहर थी और वहाँ पर डिफेंडर काफी मौजूद थे, उसके बावजूद लेफ्ट किक उन्होंने जो ली उसमें कोई तेवर नहीं था, कोई तेजी नहीं थी, कोई प्लेसमेंट नहीं था और इसलिए वो बिल्कुल व्यर्थ जाता हुआ स्ट्रोक नजर आया। तो ये दिखा रहा है कि जो बॉडी लैंग्वेज है इस समय काफी नकारात्मक सोच के साथ यहाँ पर मिजोरम की खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहा है। ये नकारात्मकता जब आपके शरीर में संचारण करती है तो अच्छे से अच्छा खिलाड़ी वहाँ पर कहते ना कि वो अच्छा प्रदर्शन करने से वंचित रह जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: And exactly why the substitutions were made, Mahesh, in this moment. And as rightly mentioned, a golden opportunity in the dying stages for NCC to have a consolation goal. But the captain present there was not able to hit the ball. No power on the shot whatsoever. And ultimately, the situation, the positive situation, the positive frame of mind, and the overall gameplay that NCC managed to get on that instance came out to nothing. And you see a player down now in the attacking half for Jharkhand in the dying moments of the 65th edition international tournament, Junior Girls Under 17. Jharkhand leading the final with 2 goals. Goal scorer Manisha Dung, their top goal scorer in the group stages, making an instant impact in this final again as the floodlights are beaming down on the iconic turf here at the Dr. Ambedkar Stadium in the capital city. A day when Delhi opens its heart to the whole of India and beyond. A fantastic spectacle we have witnessed. An attempt on goal from Jharkhand. A dead ball situation, a direct attempt, a superb disguise made. 3 players in the box, but the moment was there to go for glory. And now the referee having a look at his watch, just witnessing what can be done. A superb through ball for Jharkhand now. Can there be a situation here on the right-hand side flank?

0: timely interception by NCC player Manish. Yeah.
1: नहीं नहीं संतनु, आपने कहा वहाँ पर एक मौका था, पिछले जो एक मिनट का खेल था वहाँ पर 3-0 की बढ़त हो सकती थी, लेकिन जो शॉट लिया था वहाँ गोल पोस्ट के जो पोल्स होते हैं उससे टकरा कर रिफ्लेक्ट हुई थी, और इस बार फिर कॉर्नर किक, और कॉर्नर किक का इस्तेमाल देखना कि यहाँ पर 10 नंबर की जर्सी पहनी हुई खिलाड़ी जो है बीना कुमारी कप्तान किस तरह से लेती, जबकि गोल पोस्ट के अंदर इस समय 4 खिलाड़ी मौजूद है, क्या हेडर का इस्तेमाल होगा, हुआ लेकिन गोल पोस्ट के बाहर फिर निकलती हुई, फिर एक बार वहां पर थ्रोइंग मिलती हुई नजर आएगी, और इसका फायदा देखना है कि कहां तक झारखंड की टीम ले पाती है। दुधिया रोशनी से नहाया हुआ स्टेडियम, जैसे कि आपने कहा यहां पर बिल्कुल पास में अरुण जेटली स्टेडियम मौजूद है जो फिरोशा कोटला के नाम से जाना जाता था, एक ऐतिहासिक स्टेडियम, 35,000 की क्षमता वाला ये स्टेडियम, और दिल्ली का ये फुटबॉल का एक हब माना जाता है, और देखना है कि यहां पर क्या झारखंड 2026 का ये मुकाबला जीतकर तीसरा टाइटल अपने नाम यहां पर कर पाता है, जबकि खेल आगे बढ़ता हुआ पहली बार पोजीशन काफी देर के बाद नजर आया वहां पर मिजोरम के पक्ष में, जबकि तेजी के साथ यहां पर पड़ती हुई नजर आ रही खिलाड़ी, और पहला मौका गोल पोस्ट की तरफ आगे बढ़ने का दाहिने फ्लैंक से आक्रमण की तैयारी, लेकिन सफल नहीं हो पाई, और अच्छा पास दिया, अच्छा बचाव किया वहां पर खुशबू ने, जबकि पास उषा कुमारी के पास इस समय, और आगे बढ़ने की चेष्टा वहां पर जिस तरह से शरीर से टकराए डिफ्लेक्ट हुई, और इसके पहले कि साइडलाइन से बाहर जाए खिलाड़ी ने उसे कंट्रोल किया, निश्चित किया, और फिर बढ़ा दिया अपने सहयोगी खिलाड़ी के पास, ठीक है अंदर चलता हुआ ये खेल, और जिस तरह से वहां पर गिरती भी नजर आई, शायद वो अंपायर का रेफरी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाह रहे हैं कि किसी तरह से कोई फॉल्ट दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और निश्चित रूप से पहरेदारी इस मुकाबले की जो कर रहे हैं सर्जेंट यस सरत और असिस्टेंट रेफरी कॉर्पोरल स्टीफन और उत्पल बोरा, बहुत ही सफाई के साथ उनका ध्यान बिल्कुल खिलाड़ियों के हर क्षण में, हर उनके मूवमेंट पर इस समय लगा हुआ है। तिरछा पास समय व्यतीत करती हुई नजर आई यहाँ पर झारखंड की टीम, और क्यों ना हो 2-0 की बढ़त आपके पास मौजूद है तो किसी भी तरह से यहाँ पर पोजीशन अपने पास रखें, ड्रिबलिंग करें, तिरछे आड़े तिरछे पासेस दें, और इस बढ़त को अगर बढ़ा सके तो बढ़ाएं, नहीं तो समय अपने हाथ में रखते हुए ये 2-0 की बढ़त उनके लिए काफी है मुकाबला जीतने का।
0: The way that Jharkhand are playing now certainly seems to be that they are content with the 2-goal lead. Another attempt of a tiki-taka kind of a movement in the attacking third of the ground, but nicely intercepted. And as we see Mahesh now, the fourth official indicating 2 minutes of added time. So 2 minutes is all NCC have now to come back in this match. Can they find a goal? A goal can bring a second goal. Will this be a moment for magic, or will Jharkhand continue their dominance in this form? Another attack from Jharkhand as we see in the D, a shot goes in, but nicely blocked that is in the dying moments. A fantastic piece of interception. NCC holding on and making sure there is no goal number 3 for Jharkhand. However, again now the ball is in the air from Veena Kumari in the center of the park. She has forced the midfield for Jharkhand from match number 1 to match number 7, from the very first moment to the very last moment of this tournament. Junior Girls Under 17 Subroto Cup International Football Tournament, the ultimate glory of youth grassroots football in the country.
1: बिल्कुल सर, हमने ये एडेड टाइम का कितना अहमियत होती है इसको हमने अभी अभी फिलहाल फीफा वर्ल्ड कप जो मुकाबला हुआ था उसमें हमने देखा, जहाँ पर स्पेन और अर्जेंटीना के बीच में पूरा मैच जो खेला गया 0-0 की गोल के साथ जो समाप्त हुआ, लेकिन एडेड टाइम जो मिला वहाँ पर 106वें मिनट में वहाँ पर फेरान टोरेस ने निको विलियमसन के हेडर के जरिए मिले हुए पास को कन्वर्ट किया था गोल में, और एक्स्ट्रा टाइम में वो जो इंजरी टाइम था उसमें 1-0 की बढ़त हासिल करते हुए स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तो ये एडेड टाइम भी बहुत अहमियत रखता है, बसर थे गोल की जो डिफरेंस है तो यहाँ पर 2-0 की बढ़त अब किसी भी तरह से कम होने का नाम लेते हुए नजर नहीं आता।
0: The energy in the legs seem to be dropping now for NCC. Shoulders dropping, the attitude is clear and evident. And Sergeant Sharat Lamkang now having an important look at his watch. Interesting to see now how many minutes more being added on to this game. Jharkhand now within touching distance of creating history. 2 goals today in the form of Manisha Dung. Both goals scored with fantastic precision, being present in the right moment, reacting first to the second balls, and making sure, ensuring that the team converts.

0: the opportunity that it gets. Another attack from Jharkhand. They resign from the fact. And as the final whistle goes, this is it. There will be no more. There should be no more. The final whistle is blown. The Queens from Kumla have reclaimed their throne. Saint Patrick's High School from Kumla, Jharkhand are the champions of the
1: से रखनी होगी। और जैसे कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यदि प्रयास निरंतर है तो एक दिन सफलता जरूर मिलती है, और वो काफी दिनों के बाद, दो सालों के बाद कहिए यहाँ पर नजर आई। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, और जो गोल वहाँ पर भागे थे मनीषा डुंग ने, वो दो गोल मैं समझता हूँ काफी निर्णायक साबित हुए, और आखिरकार मुकाबला इस 65वें संस्करण का यहाँ पर जीत लिया है झारखंड की टीम ने। झारखंड के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल गुमला, इन्होंने 2-0 की बढ़त के साथ ये मुकाबला यहाँ पर जीत लिया है। तो दोनों ही टीमों को अच्छे खेल के लिए हमारी बधाई, लेकिन जीतने वाली टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत ढेर सारी हमारी तरफ से बधाइयाँ आकाशवाणी के श्रोताओं के जरिए हम उन तक पहुँचाना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी कड़ा संघर्ष उन्होंने बीच मैदान पर पैदा किया। पूरी तरह से हावी होकर खेलती हुई टीमों ने प्रतिद्वंदी को आखिरी मौके तक अपने दबाव में बरकरार रखा, और यही होता है अगर आप एक अच्छी शुरुआत कर देते हैं और दबाव में लाते हैं अपने विपक्षी टीम को, तो वहां से उन्हें निजात पाना, आगे निकलना, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्रारंभिक क्षणों में यहां पर सेंट पैट्रिक हाई स्कूल गुमला की टीम ने जो बढ़त हासिल की थी, मनोवैज्ञानिक बढ़त 2-0 के गोल के साथ यहां पर समाप्त हुई, और 65वां संस्करण सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 2026 का ये उन्होंने अपने नाम किया।
2: And for NCC, the tournament ends in a defeat, but this is surely something that they will be proud of, making inroads early in the tournament by scoring hefty score lines, a juggernaut run in front of goal for NCC in the 65th Subroto Cup International Football Tournament, junior girls under 17, and only today in the final clash, after 7 matches, NCC had to go back home. Jharkhand creating history now as the only school team in the history of the competition that began 60 years ago, 6 decades ago, only school, St. Patrick's High School from Gumla in Jharkhand, with 4 titles to their name, 4 titles of under 17 junior girls in the Subroto Cup history.
1: तो संतनों, ये बताते हुए कि अब ये मुकाबला जो फाइनल का मुकाबला था, 65वां संस्करण, यहाँ पर झारखंड की टीम ने मिजोरम की टीम को 2-0 से बढ़त हासिल करते हुए जीत ली है, और मुकाबला यहाँ पर समाप्त हुआ। जबकि यहाँ पर चीफ गेस्ट आने वाले हैं, जैसे कि हमें बताया गया, वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, जो कि अति विशिष्ट सेना मेडल वायुसेना मेडल और विशिष्ट सेना मेडल से सम्मानित है, वो चीफ गेस्ट होंगे। लेकिन जैसे ही खेल समाप्त हुआ, झारखंड ने मुकाबला जीता, मैं आपको सारे हमारे श्रोताओं को ये बताते हुए कि झारखंड की टीम तीसरी बार इस टूर्नामेंट को जीती है।

0: अनार स्थान क्योंकि प्रोड्यूसर हैं, फैक्स हैं दिल्ली दूरदर्शन के, दिल्ली आकाशवाणी के, और राज लक्ष्मी इनके तरफ से आपको दिल्ली के स्टूडियोज वापस ले चलता हूँ, वॉल टू स्टूडियोज।
1: अभी आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में सुब्रत कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के अंतर्गत खेले गए अंडर 17 बालिका वर्ग के फाइनल मैच का आंखों देखाल सुन रहे थे। आंखों देखाल सुना रहे थे हिंदी में महेश तिवारी और अंग्रेजी में शांतनु मिलिंद टिपनेस।
2: You have been listening to the live commentary of the Under 17 girls final match of Subrat Cup International Football Tournament 2026 played at Dr. Bhimrao Ambedkar Stadium, Delhi. Our commentators were Mahesh Tiwari in Hindi and Shantanu Milind Tipnis in English. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashvani.

0: ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం నిలయంలో సమయం 8:45 కావస్తుంది. మరికొద్ది సేపట్లో సమాచార్ సంధ్య హిందీలో, అనంతరం ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సే సమాచార్ సంధ్యా కే సాత్ మే ముకేష్ కుమార్. नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज. लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई. बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी. इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की. और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ. भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती. भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं. नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं. श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है.
2: दो जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है. पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं. दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे.
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है. 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के

63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111 2308

0: 8-8 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 977-985-131-687, 977-970-910-7500 और 977-981-032-6117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू स्वांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
1: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
2: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
1: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरूआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
4: Discussions are expected.
5: दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इस पे व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी।
0: ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जपारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की

0: आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
1: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
2: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
3: रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में। ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
5: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रूपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
6: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए

0: ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लेन क्रिंग्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India steps up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to flash flood tragedy. 290 Indians among nearly 1300 missing people. Death toll rises to 359. Heavy rain likely over Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand and northeastern states till Saturday. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyzstan from Saturday. Defence Minister Rajnath Singh lays foundation stone for T-series tank overhauling project at Jabalpur in Madhya Pradesh, terms it another milestone in nation's journey towards self-reliance. Government begins targeted release of onions from buffer stock to ensure adequate availability and moderate seasonal price pressures in coming months. And in men's cricket, second test between India and hosts Sri Lanka ends in a draw. Visitors clinch the series 1-0. And now the news in detail. India has stepped up efforts to trace and rescue Indian nationals stranded in Nepal due to the flash flood tragedy. Death toll in the yesterday's massive flash floods in Nepal has reached 359 as authorities race against time to find thousands of missing people, including 290 Indians. Authorities in Tibet and Nepal have reported over 1,300 people missing as of today. Out of these, many are foreigners. Both authorities reported that people from more than 30 countries are missing. The External Affairs Ministry has said that 84 Indian nationals have been rescued so far in Nepal. These include 63 workers of the Trishuli 1 project as well as 21 people from Tamil Nadu. The ministry said that contact with 290 Indians have not been established so far. Addressing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the Indian Embassy in Kathmandu is in touch with the project authorities to collect information as communication links in the affected area have been disrupted. Mr. Jaiswal said the Indian authorities are making all possible efforts in coordination with the Nepalese authorities to establish contact with the stranded Indians and ensure their safety.
2: Prime Minister yesterday spoke to the Prime Minister of Nepal, conveyed our deepest condolences, conveyed that India stands in solidarity with people of Nepal, as also offered all possible humanitarian assistance from our side.
1: Mr. Jess

0: మీరు ఇంతవరకు ఆపత మధురాలు పాత తెలుగు సినిమా పాటలు విన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ఇంతటితో సమాప్తం. ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం నిలయంలో సమయం 11 గంటలు కావస్తుంది. మరికొద్ది సేపట్లో హిందీలో వార్తలు వింటారు. ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే మొహమ్మద్ జుబైర్. भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं. नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं. श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है.
2: 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है. पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैम्प, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं. दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें की 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे.
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है, जबकि 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं. विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है. नियंत्रण कक्ष से +9111-23088718 और +9111-23088719 पर संपर्क किया जा सकता है. काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए +9779851316807 और +9779813261 नंबर जारी किए हैं. इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है. नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए. तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं. नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया. हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है. नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया. संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरूआती सहायता दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे. इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।